कभी कभी खुशी किसी बड़ी वजह से नहीं आती, बस मन में इच्छा हो तो आप खुशी महसूस कर सकते हैं। तो आज अपने मन की सुनिए और एक छोटी सी खुशी चुनिए और उसे पूरे दिल से जी लीजिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वही है जिसे हम मुस्कुराकर जी लेते हैं।

दोस्तों, हमारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि हमने जिंदगी में कितना पाया, बल्कि हमारी पहचान इस बात से बनती है कि हमने कितने दिलों को छुआ। इसलिए आज कुछ ऐसा कहिए, कुछ ऐसा करिए जिससे लोग कल भी आपको याद करें और प्यार करें, क्योंकि आवाज थम जाती है लेकिन अच्छे बोल बहुत दूर तक जाते हैं।

दोस्तों जानते हैं, कुछ रिश्ते जिंदगी में यूं ही नहीं आते। उनके पीछे कोई पुराना एहसास, कोई अनकहा रिश्ता और कोई खूबसूरत वजह जरूर होती है। इसलिए जो लोग दिल के करीब है ना, उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि हर मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं होती है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए।

अधिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

101.9.

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली। वेल स्टूडियो में 11:03:50 हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक वेकेशन के बारे में, या कुछ ऐसा ट्रेंड जो वेकेशन में देखने को मिल रहा है। तो जब भी हम वेकेशन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एक खूबसूरत सी जगह, एक अच्छी सी होटल, थोड़ा घूमना फिरना, अच्छा सा खाना, और सबसे ज़रूरी क्या होता है वेकेशन का? वो होता है थोड़ा सा आराम। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपकी अगली छुट्टी कुछ अलग हो, मतलब सुबह उठकर पहाड़ों पर सैर करना हो, थोड़ी देर योगा करना हो, या किसी खूबसूरत जगह पर ट्रैकिंग करना, और शाम को नेचर के बीच बैठकर सुकून से बस उस एनवायरनमेंट को फील करना, सुनकर अच्छा लगा। तो अगर आपकी अगली छुट्टी जो है हो सकती है एक फिटकेशन। अब फिटकेशन क्या है और ये क्या नया ट्रेंड है जो चल रहा है फिटकेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे इन अ बिट आफ्टर दिस सॉन्ग। सो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9 पर।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 पर। मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ट्रेंड का जो आजकल बहुत चर्चा में है और कई लोगों ने इसे आजमाया भी है, क्योंकि टर्न्स आउट फिटकेशन इज़ द न्यू वेकेशन। अब जानते हैं कि फिट वेकेशन है क्या एक्चुअली। तो ये एक ऐसी छुट्टी है जहाँ घूमना फिरना भी होता है और साथ में सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। सो अपेरेंटली फिटनेस एंड ट्रैवल आर बिकमिंग द न्यू हॉलीडे कॉम्बिनेशन। तो फिटकेशन का मतलब सिंपल भाषा में फिटनेस प्लस वेकेशन है ना, सीधी सी बात। एक ऐसा हॉलीडे जहां आप ट्रैवल करते हो और साथ साथ आप अपना फिटनेस का वेलनेस का भी ख्याल रखते हो। और आमतौर पर वेकेशन पर जाते ही हम क्या चाहते हैं, राइट? थोड़ा आराम करना, साइट सीइंग करना, या स्लीप इन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? लेकिन इस वेकेशन में, इस फिट वेकेशन में अपनी छुट्टियों का हम हिस्सा बनाते हैं कुछ एक्टिविटीज़ का, जो है वेलनेस एक्टिविटीज़, जैसे कि योगा हो सकता है, साइकिलिंग हो सकती है, या स्विमिंग, या कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स हो सकता है दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर आर फिटनेस, राइट? तो ट्रेडिशनल वेकेशंस में हम साइट सीइंग और रिलैक्सेशन पे फोकस करते हैं, बट यहाँ पे हम मूवमेंट पे फोकस करते हैं। तो अगला गाना आ रहा है From the film Bar Bar, देखो, so enjoy this track.

तो हम बात कर रहे हैं फिटकेशन के बारे में, क्योंकि यू नो नॉर्मल ट्रेडिशनल वेकेशंस में हम फिटनेस के बारे में उतना सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम फोकस होता है साइट सीइंग पर और रिलैक्सेशन पर. पर यहाँ पे इस वेकेशन पे मूवमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि किसी के लिए मतलब हो सकता है कि रोज़ की कसरत को जारी रखना, उनके हर दिन के एक्सरसाइज रूटीन को वहाँ पर भी फॉलो करना, और किसी के लिए कुछ यू नो अपना वेट लूज करना, या किसी के लिए और अपने मसल स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना. तो हर किसी का अपना चॉइस है, बट वेकेशन में मूवमेंट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे घूमना भी होता है और साथ में सेहत बनाना भी. सो बेसिकली वी आर ट्रैवलिंग बट ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ आर सेल्व्स वाइल वी आर देयर, राइट? अगर हम बात करें तो छुट्टियों का अंदाज़ जो है वो काफ़ी बदल रहा है ना, क्योंकि वेकेशन हैज़ चेंज्ड अ लॉट. और ऑनेस्टली दिस सेज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द वे वी ट्रैवल टुडे, राइट? क्योंकि पहले हॉलिडे का मतलब होता था कि हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से थोड़ा एस्केप ले ले, अपनी रूटीन लाइफ से थोड़ा हमें ब्रेक चाहिए, राइट? और देखिए, ये बदलाव सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं है. आज लोग जब घूमने जाते हैं तो सिर्फ जगह देखने के नहीं, बल्कि वो अनुभव करना चाहते हैं. तो नॉट जस्ट फॉर सीइंग बट ऑल्सो टू एक्सपीरियंस इट, राइट? तो हम हमारे इस बातचीत के सिलसिले को आगे रखते हैं, पार्ट कमिंग अप नेक्स्ट सॉन्ग. स्टे ट्यून्ड.

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वेकेशन की जहाँ पे हमारी फिटनेस का भी ख्याल रखा जाता है और जिसका नाम बना है फिटकेशन। तो जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग आज घूमने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें याद रह जाए, जैसे उन्होंने पहाड़ पे ट्रैकिंग किया हो या समुंदर के किनारे कुछ रिलैक्सेशन या ब्रीथिंग एक्सरसाइज की हो या आप किसी पुराने शहर में साइकिलिंग्स। पहले हम पूछते थे कि कहाँ जाना है, राइट? बट अब शायद लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वहाँ जाकर मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ, और यही सोच जो है फिटकेशन को खास बना रहा है। बट नाउ मोर एंड मोर पीपल आर सेइंग, राइट, लेट्स क्रिएट अ बेटर रूटीन वाइल वी ट्रैवल, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ समथिंग कॉल द एक्सपीरियंस इकोनमी। रिट्रीट

0: Pepe ko bas pasand hai.
1: ऑलराइट, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फिटनेस कैसे एक लाइफस्टाइल बनता जा रहा है, राइट? क्योंकि फिटनेस इटसेल्फ अभी ये नो एक आवर जिम में स्पेंड करना यहाँ तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल बन चुका है. यहाँ पे जो ग्लोबल हेल्थ एंड फिटनेस क्लब मार्केट है वो काफ़ी ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन सिग्निफिकेंटली रखता है ओवर द कमिंग ईयर्स. और इंडिया में भी ये फिटनेस इंडस्ट्री जो है काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है.

0: जो बेसिकली हमें एक चीज बताता है कि फिटनेस इज मूविंग फ्रॉम बीइंग अ नीश इंटरेस्ट टू बिकमिंग अ मच बिगर पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. और नेचुरली ये हमारे ट्रैवल में भी अपना जगह धीरे धीरे जो है बना रहा है. तो इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है? बहुत सारे वजह तो हैं, बट एक इंटरेस्टिंग रीज़न ये भी है कि द पोस्ट पैंडमिक इफेक्ट, राइट? तो पैंडमिक ने बहुत सारे लोगों को, हमें से सभी को जो है अपने हेल्थ के बारे में एक बार फिर से सोचने का, रीथिंक करने का एक मौका दिया है, राइट? फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पीपल एक्सपीरियंस लिमिटेड मूवमेंट, स्ट्रेस, डिसरप्टेड स्लीप और काफ़ी वही डिफरेंट डेली रूटीन, राइट? मगर उस दौरान हमने जाना, महसूस किया कि रोज़ की ज़िंदगी में चलना फिरना कितना ज़रूरी है, नींद कितनी ज़रूरी है, सही खाना कितना ज़रूरी है और अपने मन को शांत रखना भी उतना ही ज़रूरी है. इसीलिए अब बहुत से लोग छुट्टियों में भी अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते. वो घूमना चाहते हैं लेकिन ऐसी जगह जहाँ चाहते हैं कि वो वापस आकर स्ट्रॉन्गर फील करे, हेल्दियर फील करे और एकदम रिलैक्स्ड भी फील करे.
1: सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश.
2: वंदे मातरम. प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं. विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान. फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.

0: FM Rainbow 101.9.
1: बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपके साथ आरजे रफली, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिटकेशन के बारे में, यानी कि वेकेशन के साथ साथ हमारे फिटनेस का भी ख्याल रखना। तो इंडिया में जो है बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल फिटकेशन के डेस्टिनेशंस हैं, राइट? और ये परफेक्ट डेस्टिनेशंस भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है ऐसी जगहों का जहाँ पे हम ट्रैवल के साथ साथ फिटनेस और वेलनेस को कंबाइन कर सके। तो सोचिए, अगर आप मनाली चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको पहाड़ मिल जाएंगे, ट्रैकिंग और एडवेंचर को एक्सपीरियंस कर सकोगे। लद्दाख अगर आप ने अपने कभी गए हो या आपका जाने का कोई प्लान्स हो, तो वहाँ आप खुली हवा के साथ साथ पहाड़ी रास्ते का आनंद उठा सकते हो। या गोवा अगर अपने चले गए तो आपको समुंदर की एक्सपीरियंस हो सकती है, वहाँ पे आप साइकिलिंग, सर्फिंग और बीच के किनारे आप योगा भी ट्राई कर सकते हो। सो इट्स ऑल इन आर प्लेसेस। और फिर शिलोंग हो सकता है, कोडाईकनाल हो सकता है, काजीरंगा भी हो सकता है, जैसे ऐसे बहुत सारे खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं जहाँ हम नेचर के साथ साथ सेहत और सुकून दोनों को अनुभव किया जा सकता है। तो एक्सपीरियंस जो है हमारे डेस्टिनेशंस के साथ साथ हमारे फिटनेस को भी काफ़ी, क्या कह सकते हैं, एक वेल राउंडेड एक्सपीरियंस जो है मिल जाएगा।

Well, that was Bang Bang, जिसे गाया है बेनी दयाल एंड नीति मोहन ने. तो हम बात कर रहे हैं फिकेशन के बारे में, राइट? जहाँ पे हमारे कंट्री में ऐसी बहुत सारी जगह हैं वेर यू कैन एक्सपीरियंस सम ऑफ देम, राइट? तो इमेजिन करने के लिए आप सोच सकते हैं ना, सुबह आपकी आंखें खोलते ही सामने पहाड़ हो, ठंडी हवा चल रही हो, आप थोड़ी देर तक आपकी कसरत या जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, फिर एक लंबी सी पहाड़ी सैर, और फिर दिन भर आप नेचर को देख सकते हैं, और शाम को जब सूरज को पहाड़ों के पीछे डूबते हुए देखें, तो बताइए इससे बेहतर छुट्टी क्या हो सकती है, राइट? दैट डजंट साउंड्स लाइक अ वंडरफुल हॉलीडे, दैट साउंड्स लाइक अ प्रिटी अमेजिंग हॉलीडे टू मी, राइट? बट हियर इज द रियल क्वेश्चन, ठीक है? आप किस तरह की छुट्टी पसंद करना चाहेंगे? एक तरफ है जहाँ पे आपको सुबह जल्दी उठना पड़े, ट्रैकिंग करना पड़े, या आपका एक्सरसाइज जो भी हो आप प्रेफर करना चाहो, और दूसरी तरफ सुबह देर तक सोना, होटल में आराम से नाश्ता करना, या बस स्विमिंग पूल के पास जस्ट बैठना और कहना आज कुछ नहीं करना. और सच बताइए आप किस टीम में है, टीम फिटकेशन या टीम बस आराम करो? और वैसे भी दोनों बिल्कुल ठीक है, राइट? क्योंकि छुट्टियों का असली मकसद ही है खुद को अच्छा महसूस करवाना, राइट? किसी के लिए 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग सुकून है, तो वहीं किसी के लिए 8 घंटे की चैन भरी नींद वो सुकून है, एंड दैट्स ओके टू, राइट? आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9.

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। तो हमने बात किया वेकेशन के बारे में, कैसे ये ट्रेडिशनल वेकेशन से थोड़ा हटके हैं, जहाँ पे हम साइट सीइंग और रिलैक्सेशन को अहमियत देते थे। तो फिट वेकेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमारे फिटनेस और वेलनेस का ख्याल जो है साथ में रख रहे हैं, है। और फिट वेकेशन का ये नया अंदाज़ हमें एक बहुत खूबसूरत बात भी सिखाता है कि छुट्टियां सिर्फ ये नहीं कि हम कहाँ गए, बल्कि ये भी है कि हम वापस कैसे आएं। अगर किसी के सफ़र के बाद आपका मन हल्का हो, शरीर में आपकी कोई नई ऊर्जा हो, या चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट हो, और दिल में खूबसूरत सी यादें जो आपने बटोरे हो, तो शायद वही एक परफेक्ट वेकेशन है। तो अगली बार जब छुट्टियों का कोई प्लान बनाएं, सिर्फ ये मत सोचिए कि कहाँ जाना है, एक बार ये भी सोचिए वापस आकर मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ। और अगर जवाब नहीं, तो आप कैसे अपने आप को फिट करेंगे, या कैसे अपने आप को सेहतमंद रखेंगे, खुश और यू नो तो वो नई एनर्जी के साथ वापस आने की कोशिश करेंगे। तो शायद आपकी अगली छुट्टी एक वेकेशन अगर होनी चाहिए, और अगर आप नो टीम फिट वेकेशन है, तो यू कैन ट्राई दिस, राइट। सुनते रहिए आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 11:56 एंड 15 सेकंड्स। आपसे कुछ ही देर में 12 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ इन हिंदी और 12:05 में आप सुनेंगे न्यूज़ इन इंग्लिश और उसके बाद हम 12:10 पर वापस हाजिर हो जाएंगे। नमस्ते, हेलो, आदाब के साथ सुनते रहिएगा FM रेनबो 101.9। दिस इज़ RJ रफली।

श्री वक्त में वक्त हुआ है 11:59:40. अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे न्यूज़ इन हिंदी फॉलोड बाय न्यूज़ इन इंग्लिश. स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9.

0: राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृत दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस

को याद किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनर्स्थापित करना तथा क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 12:27:52. तो दोस्तों, कल 15 अगस्त है, एक ऐसा तारीख जो हर इंडियन के दिल में एक स्पेशल जगह रखती है, और इस साल हम मना रहे हैं इंडिया का 80th इंडिपेंडेंस डे. लेकिन पता है, इंडिपेंडेंस डे की यादें सिर्फ हिस्ट्री बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, हमारे अपने बचपन की भी कितनी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं इस दिन से. याद है स्कूल का वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस? कुछ दिन पहले से ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाती थी कि 15 अगस्त को क्या होगा, स्कूल जाना है. लेकिन नॉर्मल स्कूल डे जैसा नहीं लगता था. सुबह सुबह वो ऑल वाइट यूनिफॉर्म पहनना, वाइट शूज पॉलिश करना, बालों को प्रॉपरली सेट करना, और फिर स्कूल पहुँचते ही एक अलग ही माहौल. ग्राउंड में तिरंगा, स्टेज डेकोरेट हुआ और टीचर्स की प्रिपरेशंस, और हम बच्चे बस अपनी बारी का इंतज़ार करते थे, राइट?

कोई स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता तो वहीं कोई पेट्रियोटिक गाना गाता, तो वहीं किसी और ने कुछ ड्राइंग बनाई, या किसी ने फैंसी ड्रेस में एक फ्रीडम फाइटर का रोल अदा किया। और कुछ बच्चे तो सिर्फ इसीलिए पार्टिसिपेट करते थे क्योंकि प्रोग्राम के बाद रिफ्रेशमेंट्स मिलने वाली होती थी, राइट? वेल, हम बात करेंगे इस यादों के बारे में इस गीत के बाद, तो बनी रहिएगा ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। मैं हूँ आपके साथ RG रफली।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। मैं हूं आपके साथ आरजे रफली। और जैसे कि हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हमारे स्कूल में, तो कैसा माहौल होता था, राइट? तो जैसे मैंने कहा, बहुत अलग ही माहौल होता था स्कूल में। यू नो, वाइट यूनिफॉर्म पहनना और यू नो अपनी वाइट शूज़ को अच्छे से चमकाना और फिर अच्छे से अपनी बाल बना के स्कूल में जाना, और फिर वो माहौल जो है हर दिन से थोड़ा अलग रहता था, राइट? कोई बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, बहुत सारे बच्चे उन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते थे, राइट? और कुछ बच्चे तो इसीलिए पार्टिसिपेट करते थे क्योंकि रिफ़्रेशमेंट्स उन्हें मिलने वाला था। वो बिस्किट्स हो सकते थे, कभी कभी लड्डू भी मिल जाते थे। एंड ऑनेस्टली उस वक्त जो रिफ़्रेशमेंट्स थी वो भी किसी ट्रॉफी से कम नहीं लगती थी। लेकिन इन सब के बीच में वो पेट्रियोटिक फीलिंग जो हमें आती थी 15 अगस्त के दिन, हर जगह जो है तिरंगा लहराता था और फिर यू नो चारों ओर से बस पेट्रियोटिक गाने सुनने को मिलते थे सुबह उठते ही, तो वो पूरा दिन जो है एक अलग ही महसूस हमें करवाता था, राइट?

0: FM Rainbow 101.9।
1: आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब विद मी आरजी रवली। तो जैसे मैंने कहा, बचपन में स्कूल का 15 अगस्त के दिन माहौल बहुत ही अलग होता था, राइट? फिर बचपन में शायद हमें इस बात का इल्म नहीं था कि ये छोटी छोटी खुशियों के बीच हम शायद ये पूरी तरह समझते नहीं थे कि जिस आज़ादी का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसके पीछे कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हम अपनी मर्जी से जी सके, अपनी बात कह सके और अपने देश का फ्यूचर खुद डिसाइड कर सके। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मी भाई, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और काउंटलेस ही ऐसे बहुत सारे नोन और अननोन फ्रीडम फाइटर्स हैं। और इन सब की हिम्मत, संघर्ष और बलिदान ने हमें वो आज़ादी दिलाई जिसे हम आज अपनी ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा समझते हैं। और शायद इंडिपेंडेंस डे का असली मतलब भी यही है, सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं बल्कि उन सैक्रिफाइसेस को याद रखना जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। आज जब हम तिरंगे को देखते हैं तो एक बार अपनी स्कूल के उस छोटे से ग्राउंड को भी याद कीजिए, वो सफ़ेद यूनिफॉर्म, वो पेट्रियाटिक गाने, वो कॉम्पिटिशन्स या चाहे वो रिफ्रेशमेंट्स और वो बचपन की एक्साइटमेंट, क्योंकि कुछ मेमोरीज जो है वक्त के साथ साथ पुरानी नहीं होती, बस और ज़्यादा कीमती हो जाती है। सो ऑन दिस 80th इंडिपेंडेंस डे, लेट्स सेलिब्रेट नॉट जस्ट द फ्रीडम वी इनहेरिटेड बट ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैरी फॉरवर्ड।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली, लेकर हाजिर हूँ हेलो रेनबो, यानी कि अब वक्त है आपकी आवाज़ सुनने का। और आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और इसके बारे में आज हमने बात भी किया है हमारे सेगमेंट में, बट आई एम श्योर हर किसी के पास इसका एक फेवरेट आंसर जो है वो ज़रूर होगा। और आज का हमारा सवाल आपसे यही है कि वॉट इज़ योर फेवरेट कम्फर्ट फूड, मतलब जब आपका मूड थोड़ा ऑफ हो, जब आप टायर्ड हो या फिर एक लॉन्ग हेक्टिक डे के बाद घर पहुंचते हो, तो ऐसा क्या खाना है जो एकदम से आपका मूड बेटर कर देता है। तो आपकी फेवरेट कम्फर्ट फूड क्या है वो हमारे साथ आप आज शेयर कीजिए। डायल करें नंबर 0402320030 या 0402320341 या 0402970475 पर।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। मैं हूं आपके साथ आरजी रफली। वो बात कर रहे हैं कंफर्ट फूड के बारे में, तो आपका कंफर्ट क्या है वो आप हमें कॉल कर सकते हो या मैसेज करके बता सकते हो, क्योंकि बहुतों के लिए कंफर्ट फूड अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए वो सिंपल दाल चावल, तो किसी के लिए बिरयानी, या किसी के लिए वो गर्मा गर्म डोसा या इडली। और लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि आपकी फेवरेट कम्फर्ट फूड क्या है, मगर मुझे जानना है कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो कंफर्ट फूड आपका कैसा बना। तो चलिए एक और गाना सुनते हैं फ्रॉम द मूवी याराना। एंजॉय दिस ट्रैक।

0: FM Rainbow 101.9।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो और हम बात करते हैं हमारे कॉलर से। हेलो।
2: हेलो रावली जी।
1: नमस्कार सर।
2: नमस्कार
1: जी सर।
2: मेरा नाम जो है वो लेडी प्रभाकर राव
1: जी। प्रभाकर जी, तो बताइए सर, आपका कंफर्ट फूड क्या है?
2: पसंद की फूड क्या है बोले तो घट दाल।
1: घट दाल, ओके।
2: घट दाल और उसके साथ कौन सा भी अचार, ना मैंगो ना नींबू।
1: हाँ, मतलब कोई भी अचार आपको चल जाएगा उसके।
2: हाँ, साइड में रहना पड़ता। बिल्कुल
1: बिल्कुल जी, जी।
2: और उसके साथ सांबार, दही, और पनीर, मसाला पनीर और रोटी।
1: अच्छा, रोटी और पनीर मसाला करिएगा आप
2: ज्यादा रात के टाइम पे वो खाते।
1: अच्छा जी, राइट राइट।
2: रोटी और पनीर,
1: पनीर खाते जी। हाँ। जी राइट।
2: और स्वीट्स बोल तो कौन सा भी, गुलाब जामुन नहीं तो
1: जी। जी राइट। तो आपको ये मतलब दाल चावल और पनीर करी चपाती के साथ आपको खाना पसंद है। वेल, आज मैंने सवाल आपसे पूछा है कि यू नो आपकी फेवरेट कंफर्ट फूड क्या है, कि कभी कभार क्या हो जाता है हम यू नो जब हम टेंशन में होते हो या यू नो कभी उदास हो जाते हो, मन अच्छा नहीं रहता, तो जब जो है फूड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे चेहरे पे वो इंस्टेंट यू नो स्माइल ले आ सकती है, बिकॉज फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम बींग आर कम्फर्ट फूड, उस खाने के साथ वो मेमोरीज भी हमारी ताज़ा हो जाती है, राइट? कि पहली बार हमने कब खाया था, या हमारा फेवरेट खाना किसी ने याद रख के हमारे लिए बनाया हो, तो वो कितना मतलब अच्छी फीलिंग आती है, राइट? और फिर वो खाना हम एक एक निवाला इन्जॉय करते हैं, सो दैट मेक्स आर डे, और एटलीस्ट इट नो मेक्स आर डे मच बेटर देन इट वॉज अर्लियर, राइट? तो इसीलिए कम्फर्ट फूड की अहमियत जो है बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि दैट वन फूड, दैट वन

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फ्रॉम रेनबो 101.9 और मैं हूं आपके साथ आरजे रवली। एंड 3 o'clock में वक्त हुआ है 1:26, तो हमारे साथ अगले कॉलर से उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनका फेवरेट या कंफर्ट फूड क्या है। हेलो
1: हेलो मैम, मेरा नाम जकिया फातिमा है
0: जी। फातिमा,
1: और मैं जब उदास होती हूँ या
0: हाँ
1: मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो पहले तो मैं ऊपर वाले को याद करती हूँ,
0: जी।
1: उसके जिक्र से मेरे दिल को और दिमाग को सुकून मिलता है। दूसरा जो है मेरे मम्मी के हाथ की बनी हुई खीर मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बनाती हैं, तो
0: ओके,
1: खाने के बाद और दिल जो है बहुत खुश हो जाता है
0: खुश
1: दिल,
0: हो जाता
1: क्योंकि
0: है
1: माँ के हाथों में जो ममता होती है और माँ
0: जी।
1: प्यार होता है वो उसके अंदर होता है, जिससे हमें उससे सुकून भी मिलता है, बहुत बेटर फील भी होता है।
0: बेटर फील,
1: माँ
0: बिल्कुल
1: बाप
0: बिल्कुल।
1: बहुत कीमती चीज है, बहुत अनमोल चीज है कि माँ बाप है, तो मैं यही मैसेज दूंगी कि माँ बाप जब तक है तो हमको उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनकी
0: बिल्कुल
1: कदर करना चाहिए, उनके मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको अपने से दूर करना चाहिए। थैंक
0: राइट। थैंक यू सो मच फातिमा फॉर कॉलिंग।
1: यू, थैंक यू।
0: हेलो, हेलो,
2: हेलो
0: हेलो।
2: रवली जी, श्रीनिवास मलकपेट माँ।
0: श्रीनिवास जी, राइट सर, बताइए आपका कंफर्ट फूड क्या है सर।
2: मैडम मैं आपका टॉपिक नहीं सुना मैडम।
0: सर मैं वही पूछ रही हूँ, व्हाट इज योर फेवरेट कंफर्ट फूड जो आपको पसंद है खाना ज्यादातर या
2: ओके माँ, तो आप बोले वैसा हमारे माता जी जब तक है, हमारे माता जी का खाना मेरे को बहुत ही पसंद रहता था।
0: जी सर।
2: कसम बना रहे थे हम तो, कसम खाली रसम पी जा रहे थे। हमारे मदर बोलते अरे सबको हो रहा है, सबको हो रहा है, तुम अलग बनाओ,
0: जी
2: मेरे
0: जी
2: हाथ
0: जी
2: अलग ही बनाओ,
0: हाँ
2: तो
0: हाँ
2: आपका रसम बहुत ही अच्छा रहता। और स्पेशली ये फ्लावर गोभी का भी करी बना रहे थे, बहुत ही अच्छा बना रहे थे, वो
0: अच्छा,
2: बहुत ही पसंद था मेरे को,
0: ओके
2: ऐसा
0: ओके
2: हमारे घर में चलता था।
0: जी जी
2: हमारे पिताजी चिरोटी बोल के एक बगान थे मैडम, तो
0: ओके
2: वो तो बहुत ही अच्छा स्वीट था, तो उन्होंने 76 में गुजर गए समझो, जब तक अच्छा खाते थे हम लगा खाते
0: राइट,
2: ये करते थे, उनका
0: बिल्कुल
2: बहुत ही
0: बिल्कुल
2: पसंद रहता था हमारे को। वो
0: राइट
2: शादी जो फेस्टिवल आते थे मैं वही बोलते थे नहीं नहीं तुम वो बनाए तो इसका तुम बोल के भाई बोलता था, तो बोलता रहे क्या
0: ओके
2: रे कभी भी खान रईस दाल यही क्या रहे तुम्हारे को, हमारे को जो पसंद है
0: राइट
2: वो खाते, बोलो तुम ये खाओ वो खाओ दिले खाते, वही चिरोटी बनाओ चार चार ने पांच पांच खाते बोल के बोलते थे,
0: राइट
2: बहुत
0: सर।
2: ही अच्छा
0: थैंक यू फॉर
2: खाना था।
0: कॉलिंग।
2: थैंक
0: थैंक
2: यू माँ,
0: यू।
2: थैंक यू वेरी मच माँ।
0: राइट, कमिंग अप नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी पीकू। एंजॉय दिस ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। तो बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से, जानते हैं कि उनका फेवरेट कंफर्ट फूड क्या है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम
0: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम?
1: जी मेरा नाम सोल से, ओम शांति जी, नमस्कार मैडम, मैं तेरे पोल से मेहर बाबा जुबली हिल से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जुबली हिल से? जी सर
1: जी जी, रोड नंबर 92 तिरुमला तिरुपति देवस्थान का बाजू रहता हूँ मैडम हम लोग।
0: राइट सर, तो आपका फेवरेट कंफर्ट फूड क्या है?
1: बारे में बोले तो मैडम फेवरेट फूड जरूरत नहीं मैडम, आपका अपना एकदम रेनबो सुने तो मैडम दिन भर पेट भर जाते मैडम, खाने की भी जरूरत नहीं है मैडम।
0: जी जी थैंक यू सो मच
1: अच्छा
0: सर।
1: गाना आप लोग का बात सुन के पेट भर जा रहा मैडम।
0: ओके, सो आपको गाना सुन के ही भूख नहीं लगती है?
1: सुबह 10 बजे तक चंद्रिका मैडम सब कुछ बोली सुन लिया, फिर 10 बजे से आप आया, फिर 2 बजे से दूसरा का आगे आता मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम लोग का राजमंड्री मैडम, राजमंड्री बोलते हम लोग को नॉन वेज ज्यादा खाते मैडम, ये रही तो बुधवार का दिन हो संडे का दिन हो कैसा भी 2 दिन हफ्ते में चिकन खाते मैडम।
0: राइट सर, तो आपके फेवरेट फूड मतलब बहुत सारी वैरायटीज है जो आप खाना पसंद करते हो?
1: बंगाल में बोलते बकरा का मटन खाते
0: राइट
1: मैडम, हम लोग आंध्र में बोले तो मैडम कोई मेहमान लोग खाते मैडम।
0: राइट, सो बहुत सारे ऐसे हैं जो कंफर्ट फूड की मतलब हम वैरायटीज नहीं पूछ रहे हैं आपसे, कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो हमें काफ़ी पसंद है, या वो नमकीन हो सकता है या वो मीठे में हो सकता है, बट कंफर्ट फूड एक ऐसी चीज़ है दैट इंस्टेंटली हमारे दिमाग में एक बल्ब की तरह आ जाता है जब वी आर सैड, और जब भी हम वो खाना अगर खा लेते हैं या अगर घर पे नहीं बना पाए तो वी कैन ऑर्डर इट फ्रॉम आउटसाइड, जहाँ से वो खाना आते एकदम मन खुश हो जाता है, इवन दो वी डोंट रिफ्लेक्ट इट ऑन आवर फेस दैट मच, बट स्टिल दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। कि क्यों? क्योंकि जब वो हम खाते हैं तो हमारा मन जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है, एंड इट डेफिनेटली मेक्स आर डे मच बेटर। हालांकि उसका इम्पैक्ट शायद हम उतना तब नहीं जानते, बट फूड हैज़ दैट पावर टू मेक आर मूड मच मच बेटर।
2: బ్రో ఆకలేస్తుంది, బిర్యానీ తిందామా?
3: ఏ ఎప్పుడు బిర్యానీ ఏం తింటాం, పద హలీం తిందాం.
2: తిందాంలే గాని హలీం అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా?
3: హలీం ఎక్కడి నుంచో రావడం ఏంటి, మన హైదరాబాదే కదా.
2: కాదు, హలీం ఒక పర్షియన్ డిష్ నుండి ఎన్నో మార్పులతో ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత పాపులర్ అయింది.
3: ఓ అవునా?
2: ఇంకా దాంట్లో చాలా న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి.
3: సరే కానీ అసలు ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు?
2: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
3: జష్నే హైదరాబాదా, అదేంటి కొత్తగా?
2: ఒక్క హలీమే కాదు, ఇలాంటి మరెన్నో డిషెస్ గురించి మనందరికి చెప్పడానికి వచ్చేసింది
4: జష్నే హైదరాబాద్
2: at 2 PM ఓన్లీ ఆన్ FM రెయిన్బో 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। तो मैसेज आया है शिवा का खटकेसर हैदराबाद से। उन्होंने लिखा कि उनका कंफर्ट फूड या सूप कह लीजिए उनके लिए वो गंजी है, जो उन्हें वो खाते ही या पीते ही वो ज़्यादा लाइटर और एनर्जी ज़्यादा फील करते हैं। बट कुछ महीने हो गए हैं जिसके लिए उन्होंने इसे रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली इतना नहीं ले रहे जितना लेना चाहिए। सो उनका मानना है कि ये टॉपिक जो है काफ़ी अच्छा है, दैट इट रिमाइंडेड अस ऑफ हैविंग अ कम्फर्ट फूड, या हमारा ज़्यादा जो नेचुरल फूड है या बिना प्रोसेसिंग के जो खाना है वो हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा है। और कई बार ये साबित भी हो चुका है ना, कि प्रोसेस्ड फूड को हमें अवॉइड करना है। इसके बारे में बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं या स्टडीज़ हुई हैं और बताया जा रहा है दैट उन्होंने खाना जो है फ्रेश ही बना के खाए। और बात जो है कम्फर्ट फूड की कर रहे हैं, तो फूड जो है काफ़ी मेमोरीज़ के साथ भी आता है, राइट? बचपन का वो हमारा मनपसंदा मिठाई हो सकता है जो शायद वो अब नहीं हमें मिल रहा हो या बंद हो गया हो, बट वी स्टिल हैव दैट टेस्ट ऑफ इट्स मेमोरी, राइट? उस चीज़ की हमें टेस्ट अभी भी याद है। अगर कहीं वैसा ही या उसके एटलीस्ट नज़दीक भी वो टेस्ट आ जाता है, दैट टेस्ट जो है रिमाइंड्स अस द मेमोरी ऑफ आर अर्ली चाइल्डहुड टेस्ट। तो एवरी डिश हैज़ अ मेमोरी अटैच्ड टू इट, बट हालांकि वो अलग अलग डिश हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो कमिंग अप नेक्स्ट सॉन्ग इज ए दिल, प्यार की मंजिल, संग बाई मुकेश। एंजॉय दिस ट्रैक।

0: FM Rainbow 101.9
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। तो आज के हमारे शो में हमने शुरुआत की थी ग्लोबल हिट से, और उन सॉन्ग्स को हमने सुना जिन्होंने एक जनरेशन को ही डिफाइन किया है। ना ही केवल इसलिए कि वो चार्ट्स पे नंबर वन थे, बट आल्सो क्योंकि उनकी गानों में कुछ ऐसे मैसेजेस थे जिससे थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों ने कनेक्ट किया। और फिर हमने एक फिट वेकेशन के बारे में बात की, एंड देन वी स्पोक अबाउट आवर फेवरेट कम्फर्ट फूड, एंड ऑल्सो क्योंकि कल 80th इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, तो हमारे बचपन में स्पेशली स्कूल के दौरान जो यादें उभर के आई हैं ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, उसके बारे में भी हमने बात किया है। तो स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो गया है 1:54:50, यानी कि वक्त ने इशारा कर दिया है कि मेरा वक्त आपके साथ यहीं ख़त्म होता है। तो अगली शो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: FM Rainbow 101.9।
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
2: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: FM Rainbow 101.9।
3: Hey, did you know the Kakatiya Kalatoranam is more than just a monument?
4: Really? Tell me.
3: That's what Telanganam is all about. Stories of our land, our art, our cinema, and our people.
4: Wow. So it's like a cultural adda on radio.
3: Exactly. Every night at 8 p.m. on FM Rainbow 101.9.
5: Telanganam. Telangana's heartbeat on air.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब कोई राह नजर ना आए, नाल सा का साथ पाए,

0: नाल सा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: This is Akashvani. On the eve of Independence Day, we now bring you Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने

अपने पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर
डिजिटल

क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जनकल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुकान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुकान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की
10 करोड़ से

अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में
ମାନବତା ବିରୋଧୀ

शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध वो ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकी

के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदी पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुषुलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ, आवर कंट्री विल विटनेस द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द 80th ईयर सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। ऑल इंडियंस लिविंग इन द कंट्री एंड अब्रॉड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ ग्रेट जॉय। आवर ट्राइकलर इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम, वी अनफर्ल इट विथ इमेंस प्राइड। ऑन द 15th ऑफ ऑगस्ट 1947, भारत माता वॉज लिबरेटेड फ्रॉम द शैकल्स ऑफ सबजुगेशन। Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sports persons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers, and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all playing an important role in the nation's progress.

Bug. हर्फ ताबिंदा आप सुनेंगे मोहतरमा नूर अफशान से। डॉक्टर माइक पर सिलसिले में डॉक्टर आयशा सलमा से डिप्रेशन केस ट्रीटमेंट, इस मौजू पर नूर अफशां की गई बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। गीत सुरेले गाता जा सिलसिले में देशभक्ति गीत आपको सुनवाए जाएंगे। नैरंग प्रोग्राम के आखिर में पयाम शब जैदी से आप सुनेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आगाज पर समात फरमाइए किरत कलाम पाक का।

0: कभी आपने सुना? आइए दोस्तों, आप सुनते हैं हर्फ ताबिंद, तहरीर मोहतरमा नूर अफशां की है।
1: तोहफा देना और लेना इंसानी माशरे का एक नहायत खूबसूरत और अहम हिस्सा है। तोहफ़ सिर्फ चीज़ें नहीं होती, बल्कि ये जज्बात, एहसासात और ताल्लुकात का अक्स होती हैं। ये इंसान के अंदर मौजूद मोहब्बत, खलूस, इज़्ज़त और ख़याल की अलामत होती है। किसी को तोहफ़ा देना दरअसल इस बात का इज़हार होता है कि आप इस शख्स को अहमियत देते हैं, उसकी खुशी से खुश होते हैं और उसके साथ अपने ताल्लुक को मज़ीद मज़बूत बनाना चाहते हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहब में तोहफ़ा देने की रिवायत मौजूद है। तोहफ़ा देना न सिर्फ एक माशराती रिवायत है, बल्कि एक रूहानी अमल भी है जो दिलों को करीब करता है और आपसी रंजिशों को ख़त्म करने का ज़रिया बनता है। तोहफ़ा महंगा हो या सस्ता, छोटा हो या बड़ा, इसकी असल अहमियत इसकी नीयत में है कि जिसके साथ वो दिया जाता है। एक सादा सा फूल, एक मोहब्बत भरा खत या एक किताब ही कीमती तोहफा बन सकता है अगर वो दिल से दिया जाए। तोहफे ना सिर्फ खुशी के मौके जैसे कि सालगिरह, शादी, ईद या कामयाबी के वक्त दिए जाते हैं, बल्कि कभी कभार बग़ैर किसी मौके के दिए जाते हैं जो दिल पर ज़्यादा असर डालते हैं। ऐसे तोहफे मोहब्बत और ताल्लुक गहराई को जाहिर करते हैं। तोहफा देना शुक्रगुजारी का एक ज़रिया भी है। जब हम किसी के एहसान, मदद या ताउन पर तोहफा देते हैं तो वो इस बात का इशारा होता है कि हम इसकी कद्र करते हैं। इस तरह किसी की कामयाबी पर दिया गया तोहफा किसी की हौसला अफजाई का बाज बनता है और इसी मज़ीद मेहनत करने की तहरीक देता है। तोहफे माशराती हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग देते हैं। वो दिलों में खुशी पैदा करते हैं, नाराज़गी, हसद या दूरी को ख़त्म करते हैं। आज के मसरूफ़ दौर में लोग वक्त की कमी का शिकार हैं। तोहफ़ एक दूसरे से जुड़े रहने का ज़रिया भी बनते हैं। तोहफ़ा देना एक खूबसूरत फ़न है जो न सिर्फ दूसरों को खुश करता है, बल्कि हमें ख़ुद भी एक अजीब सी मसरत और सुकून फराहम करता है। ये खलूस, मोहब्बत, इज़्ज़त और ताल्लुक की वो ज़बान है जिसे हर दिल समझता है। हमें चाहिए कि हम तोहफे को सिर्फ ऐसी चीज़ न समझें कि वो सिर्फ देने के लिए ही हो, बल्कि ये एक रूहानी और अखलाक़ी फरीज़ा समझकर इसे अपनाएं।
0: हर्फ़ ताबिंद अभी आपने सुना, तहरीर व पेशकश मोहतरमा नूर अफशां की थी।
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत आज रात यानी 14 अगस्त 2026 को रात 9:30 बजे आप सुन सकते हैं डॉक्टर आयशा सलमा, गायनेकोलॉजिस्ट से लिया गया इंटरव्यू पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशंस पर। सामाईन सुनना न भूलें डॉक्टर साहिबा के जरीन मशवरे, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो पर, उर्दू प्रोग्राम नहरम में।
0: आइए दोस्तों, आप सुनते हैं डॉक्टर माइक पर सिलसिले में पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशन। इस मौजू पर मोहतरमा आयशा सलमा से की गई बातचीत शरीकी गुफ्तगू है मोहतरमा नूर अफशां। आइए सुने।
1: डॉक्टर से मुलाकात हम आपकी करवाते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने मदु किया है डॉक्टर आयशा सलमा साहबा को, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जो वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर आयशा सलमा साहबा, हमारे स्टूडियो में आपका दिली खैर मकदम है।
2: अदब अर्ज़े, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। एंड इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आजकल इस चीज़ का अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है।
1: आज हम बात करेंगे पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशंस पर। ऐसा तो बहुत सारी मालूमात ऐसी

0: में या दोनों में कुछ फर्क होता है?
1: दोनों के लिए सेम है। सिजेरियन में भी क्या रहता, बिकॉज अबडोमेन में
0: हाँ
1: स्टिचेस रहते हैं, तो हम अबडोमेन मसल एक्सरसाइज नहीं करना है 6 मंथ्स तक।
0: जी जी हाँ,
1: सिक्स
0: ये
1: मंथ्स
0: फर्क
1: तक
0: होता है।
1: जी वजनल में आप कर सकते हैं, बट अबडोमिनल में क्या होता, अगर आपको सिजेरियन हुआ तो इनिशियल 6 मंथ्स इट्स बेटर, आपको अबडोमेन जो कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज रहते हैं ना उसको नहीं करना है। एंड सेकेंड चीज, आप ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम
0: अच्छा
1: नहीं रहता, आप आराम से कर
0: ओके,
1: सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं।
0: तो दोनों के लिए भी, यानी आप कहा कि
1: अबडोमेन
0: ये
1: एक्सरसाइज
0: करना
1: सिर्फ
0: चाहिए।
1: सिजेरियन के
0: जी
1: बाद अपने को 6 मंथ्स के बाद करना है, बाकी एक्सरसाइज सब सेम है दोनों में,
0: ओके,
1: पेल्विक
0: जो
1: फ्लोर तो
0: बेल्ट
1: करना है
0: बांधते हैं
1: जी
0: वो कहाँ तक सही है
1: जी
0: और कितने दिन तक बांधना जरूरी है या फिर बांध सकते हैं?
1: बेसिकली क्या है, लोगों का ख्याल ये है कि बेल्ट बांधने से पेट अंदर चले जाएगा,
0: जी जी
1: जो कि बिल्कुल गलत है।
0: अच्छा
1: तो बेसिक हम सिजेरियन में अक्सर बोलते हैं कि आप बेल्ट यूज़ करिए,
0: ओके
1: क्योंकि वो जो जो हम कट करते हैं अबडोमेन पे,
0: हाँ
1: वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे आपका बिल्ली आके गिरता
0: हाँ
1: है
0: अच्छा
1: नीचे,
0: जी
1: अबडोमेन बिल्ली,
0: जी
1: तो वहाँ पे आपको प्रेशर गिरता है सूचर पे, सूचर
0: हाँ
1: लाइन पे,
0: राइट
1: तो वो प्रेशर नहीं गिरने के लिए क्या करते हैं, अबडोमेन को लिफ्ट करके आप
0: अच्छा
1: बेल्ट लगाइए, ताकि
0: हाँ
1: वो एरिया ओपन रहे, उसको अच्छे से
0: ओके
1: हवा लगे, उस पर कोई
0: प्रेशर
1: कोई भी
0: हाँ
1: प्रेशर ना गिरे,
0: राइट
1: इसके लिए हम एडवाइस करते हैं आप बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आप कपड़ा भी क्लॉथ भी बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उससे हटके तो एज सच कुछ भी ऐसा बेनिफिट रोल
0: हाँ
1: नहीं है उसका,
0: यानी हाँ उससे हटके कुछ
1: कुछ
0: भी,
1: नहीं है।
0: कोई
1: आपको
0: जैसा
1: एक्सरसाइज
0: लोगों में
1: करेंगे तो
0: इम्प्रेशन
1: ही
0: ये है क्या?
1: आपका
0: जी
1: जी
0: अच्छा
1: फैट जाएगा और आपके मसल्स नॉर्मल होंगे, आपका बेली फैट चले जाएगा एक्सरसाइज के
0: ओके
1: बाद ही।
0: ओके, एक्सरसाइज ही इम्पोर्टेंट है उसके
1: यस
0: लिए बेल्ट
1: जी
0: बांधने
1: जी
0: से ज़्यादा। तो पोस्ट डिलीवरी के बाद में क्लीनलीनेस की क्या अहमियत है और किस
1: जी
0: तरीके से, आपने वैसे तो बताया है सामान को, फिर से ज़रा डिटेल्स में बताइए कि कितनी ज़रूरत होती है उसकी और किस तरीके से रखना चाहिए अपने आप को क्लीन।
1: नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो जैसे मैं बताई थी कि इनिशियल 1 to 2 वीक्स लगते हैं आपको सूचर्स पूरे हील होने के
0: जी
1: लिए,
0: जी
1: एंड उस दौरान सिट्स बाथ इज मस्ट एंश्योर, और बेटर है आप कभी भी जा रहे हैं वॉशरूम तो बेटर यू यूज़ वार्म वाटर,
0: ओके
1: एंड जैसे बताया कि पैड्स यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग एवरी 4 to 6 आवरली, एंड आप अपने आप को भी साफ रखें ताकि बच्चे को भी कुछ इन्फेक्शन ना हो, अपने
0: अच्छा
1: सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखें।
0: जी
1: सिजेरियन में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें करना है अपने को, जैसा आप यहाँ पे हम सिट्स बात करते थे, वहाँ पे हम कुछ बस नॉर्मल शावर लेना है, कुछ सोप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वाटर
0: जी
1: से वॉश करके उसको एयर ड्राई कर देना है, तो इट विल बी लाइक गुड। एंड रही बात बच्चे की, भी इम्पॉर्टेंट है
0: जी
1: क्योंकि बेबी को भी क्या है, इनिशियली डिलीवरी के बाद पानी नहला देते,
0: जी
1: ऐसा नहीं है, आप एक 5 to 6 डेज वेट करना है, तब तक वो
0: ओके
1: आपको
0: ओके
1: जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है ना, जो
0: अच्छा
1: वो
0: हाँ
1: अपने आप निकल जाएगा, तब
0: अच्छा
1: तक उसको जस्ट स्पॉन्ज से क्लीन करना है बेबी को,
0: अच्छा
1: जब वो निकल जाएगा उसके बाद आप बेबी को अच्छे से मसाज करना भी स्टार्ट कर सकते हैं,
0: जी
1: एंड
0: जी
1: शावर भी दे सकते हैं बेबी को। एंड ये भी है कि लोग वो कॉर्ड पे ऑयल डालते, पाउडर
0: जी जी
1: डालते, नहीं,
0: हाँ
1: वो ऐसा कुछ नहीं करना है, उसके
0: ओके
1: जरिए इन्फेक्शन बेबी को अंदर चले जाता,
0: अच्छा
1: तो वो अपने आप ही ड्राई हो जाएगा, उसको कुछ
0: जी।
1: नहीं करना
0: तो ये
1: है
0: मालूमात
1: जी
0: इन ख्वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है जो
1: जी
0: यूज़ करते हैं,
1: जी एंड बेबी को जो
0: उससे
1: डायपर हम
0: जी
1: लगाते हैं
0: इन्फेक्शन होता है।
1: जी, बेबी का डायपर जो लगाते हैं वो कॉर्ड के ऊपर नहीं लगाना,
0: ओके
1: कॉर्ड देखना है कि जो डायपर है कॉर्ड के नीचे ही आए,
0: अच्छा जी
1: जो कॉर्ड का स्टंप रहता है उसके नीचे ही
0: हाँ
1: आना, ताकि अगर हम ऊपर लगा देंगे तो वो यूरिन का जो
0: जी
1: गंदी बैक्टीरिया वगैरह
0: अच्छा
1: वो उस पर उसके वजह से भी इन्फेक्शन होता है
0: ओके, तो ये
1: जी
0: सब चीज़ों के बारे में यानी
1: जी
0: ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है
1: जरूरी
0: इन सब
1: है
0: चीज़ों
1: जी
0: का।
1: जी
0: तो डॉक्टर आयशा साहबा, हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, उससे पहले हम एक ये नगमा सुनते हैं। आइए हमारे सामाइन भी सुनेंगे और हम भी सुनेंगे।

0: ये नगमा हम सब ने सुना, हमारे सामाईन ने और हमने। तो चलिए हम आपसे फिर एक बार जुड़ते हैं डॉक्टर आयशा सलमा साहबा। हमारी बातचीत का सिलसिला हम जारी रखते हैं, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशंस पर।
1: जी
0: तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जच्चगी के बाद कौन सी अलामत खतरनाक होती हैं और क्या महसूस करने पर माँ को डॉक्टर से रुजू होना चाहिए?
1: जी डिलीवरी के बाद अगर आप देखा जाए, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ ब्लीडिंग पैटर्न कैसा है आपका।
0: जी
1: अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ अबनॉर्मल। अगर
0: ओके
1: आपको ब्लीडिंग हो रही है बट उसमें आपको स्मेल आ रही है, कलर
0: जी
1: चेंज आप नोटिस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अबनॉर्मल।
0: अच्छा
1: एंड अगर आपको फीवर आ रहा है उस वजह से, लोअर अबडोमिन में पेट में दर्द बहुत हो रहा,
0: जी
1: एंड आप ये नोटिस करिए कि आपके जो स्टिचेस है उसमें से कुछ पस आ रहा, एंड मोर ओवर हेडेक, आपको अगर बार बार सर में दर्द रह रहा,
0: जी
1: तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बैड है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
0: जी तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना
1: जी
0: चाहिए बिल्कुल।
1: अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, ये भी ब्रेस्ट का इशू भी जो हम बताए थे, ब्रेस्ट में भी
0: जी
1: अगर आपको ब्रेस्ट निपल से पस आ रहा या फिर आपको
0: अच्छा
1: हेवीनेस हो रहा जिसकी वजह से आपको फीवर लगातार आते जा रहा, तो भी आपको मिलना है डॉक्टर से।
0: अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गई कि जैसा आपने बताया कि एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत ज़रूरी
1: जी
0: होती हैं,
1: जी
0: चहलकदमी एक्सरसाइज।
1: जी
0: इसके अलावा माँ की जहनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत
1: जी
0: ज़रूरी होता है,
1: जी
0: उसके बारे में भी कुछ बताइए आप।
1: जी डिलीवरी के बाद जैसे ही अपने हार्मोन्स पूरे डाउन हो जाते,
0: जी
1: तो आजकल बहुत ये सुनने में आ रहा है कि पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोल के हम सुन रहे हैं। ये बेसिकली क्यों होता है, जब हार्मोन्स आपके डाउन हो जाते, मदर को सडन चेंज हो जा रहा हो, तो
0: जी
1: जैसे सडन ड्रॉप हो जाता है, शी कैन नॉट, उसकी बॉडी उसको होल्ड नहीं कर सकती।
0: ओके
1: सबकी बॉडी अलग अलग होती,
0: जी हाँ
1: थोड़े फीमेल्स उसको टॉलरेट कर सकते
0: जी
1: ये डाउनफॉल को, थोड़े
0: ओके
1: फीमेल्स टॉलरेट नहीं कर सकते क्योंकि सबका
0: ओके
1: इमोशनल लेवल अलग रहता।
0: राइट
1: सो पोस्टपार्टम ब्लूज क्या है, इनिशियली 1 to 2 वीक्स ही रहते हैं,
0: जी
1: उसमें पेशेंट को थोड़ा सैडनेस वगैरह रहता, बट शी कैन
0: ओके
1: परफॉर्म नॉर्मल एक्टिविटीज, खुद को और बच्चे को नुकसान नहीं देती।
0: अच्छा
1: पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है
0: जी
1: जिसमें पेशेंट को सैडनेस रहता है, वो
0: अच्छा
1: अपने आप बैठ के रोने लगती है और
0: ओके
1: एकदम से एंग्शियस हो जाती, एंड कभी कभी इतना एक्सट्रीम भी हो जाता है कि वो अपने आप को या फिर अपने बच्चे को भी नुकसान
0: नुकसान
1: पहुंचाती।
0: पहुंच
1: एंड जब एक्सट्रीम लेवल पे ये होता है, तो पोस्टपार्टम साइकोसिस में चले जाते,
0: ओके
1: कंप्लीटली साइकोसिस, मतलब उनको शी डजेंट नो व्हाट इज हैपनिंग विथ हर,
0: अच्छा
1: वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है।
0: ओके
1: तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सपोर्ट ज़रूरी है, स्पेशली हस्बैंड का,
0: अच्छा
1: फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एवरी फीमेल विल, मतलब औरत कौन से स्टेज से जा रही वो
0: हाँ
1: औरत ही
0: राइट

0: समझ सकती, शी के नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, तो वो आगे वाला समझना
1: जी, तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है इसके लिए।
0: हाँ, इसलिए इसकी एजुकेशन
1: की वजूहत आप बताइए कि क्यों होती है और इसे रुकने के लिए क्या करना चाहिए। स्पेशली वो सपोर्ट तो जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी अपने आप को माएं कैसे रोक सकती हैं।
0: जब हॉर्मोन्स डाउन हो जाते ये सब चीजें स्टार्ट होते हैं। मेन फीमेल क्या करना है, अपनी जिससे भी वो बात करेंगे जिससे उसको आराम मिलता है, शी हैज टू स्पीक। अपने मेरे साथ ऐसे हो रहा, मेरे को रोना आ रहा, मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रही हूँ। तो बस लोग सुन के इग्नोर करते हैं, तुम्हारी डिलीवरी नहीं थोड़ी है, सबकी डिलीवरी होती है। ऐसा नहीं है, सबकी बॉडी अलग रहती। तो उनकी बात सुनना
1: जी,
0: क्या अगर वो बात करिए कुछ बोलिए तो उसको टाइम देना, उसको सुनना। जब उसको लगेगा कि मुझे सुन रहे हैं आगे वाला, तो वो अपना जो भी दर्द है शेयर करती। शेयर करने से वो अपने आप को रिलैक्स फील करती।
1: जी,
0: देन वो ऐसे चीजें मेन साइकोलॉजिकली रहते हैं, साइकोलॉजिकली हम उसको जब हम सपोर्ट देते हैं ना, वो अपने आप कम हो जाता है। बट अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा, तो शी हैज टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट कंपल्सरी। और ऐसा नहीं है कि साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करे तो वो कुछ गलत बात है, ऐसा नहीं है। जरूरत उसके हिसाब से डॉक्टर चेक करके कुछ मेडिकेशंस अगर लगाना है तो ही विल स्टार्ट दैट मेडिकेशंस। एंड वो उसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा, यानी 7 मेंबर्स में 1 मेंबर को तो डिप्रेशन हो रहा, इतना इंसिडेंस बढ़ गया आजकल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। एंड मानो फैमिली, पहले सपोर्ट रहता था, बहुत बड़ी फैमिली रहते थे, अभी फैमिली साइज छोटी हो गई, तो ऐसा लग रहा कि उसको किससे शेयर करूं, मैं किससे बात करूं,
1: कोई नहीं रहता,
0: कोई नहीं है सुनने वाला। सब बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल है, तुम क्या
1: वक्त भी नहीं है किसी के
0: पास, भी नहीं है। दैट्स द रीजन पेशेंट ये डिप्रेशन बढ़ जा रहा
1: है। ओके, और जब वो अकेली होती है तो सारा घर देखना उसी पर होता है, ये भी एक वजह हो सकती है। तो हम भी थोड़ा रिलैक्स होंगे और हमारे सामान को भी थोड़ा रिलैक्स करेंगे ये सब बातों से। चलिए, हमारा सिलसिला तो जारी रहेगा। डॉक्टर साहिब, एक नगमा हम सुनते हैं।

0: इस नगमे के बाद चलिए कुछ और बातें करते हैं हम इसी मौजू पर, यानी पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशंस पर। तो सभी बातें आपने हमारे सामाइन को बताई, अब आप ये बताइए कि डिलीवरी के बाद फॉलोअप चेकअप्स कितने ज़रूरी हैं
1: जी
0: और कब कब करवाना चाहिए और कितने यानी ड्यूरेशन तक करवाना ज़रूरी होता है।
1: जी नॉर्मली क्या है, डिलीवरी के बाद 1 वीक के बाद हम बुलाते हैं पेशेंट को
0: जी
1: देखने के लिए कि स्टिचेस कैसे हैं उनके।
0: जी
1: देन नेक्स्ट फॉलोअप 1 मंथ के बाद होता है।
0: जी
1: उसके बाद विल कॉल हर आफ्टर 3 to 6 मंथ्स।
0: ओके
1: बट अगर पेशेंट को मानिए शुगर है, बीपी है, थायराइड इश्यूज है, तो थायराइड है तो हम यूजुअली 1 मंथ के बाद फिर चेक करते हैं उसको। शुगर बीपी का भी चेकअप होता है। बीपी भी एवरी डिलीवरी के बाद भी शी हैज़ टू कीप ऑन चेकिंग टिल
0: ओके
1: हर रिकॉर्डिंग्स आर नॉर्मल।
0: अच्छा
1: शुगर टेस्ट भी है तो हम उसको डिलीवरी के बाद करते हैं 3rd डे या 4th डे। अगर वो
0: अच्छा
1: नॉर्मल है फिर 6 मंथ्स एंड 1 ईयर तक हम
0: हाँ
1: उसको फॉलो करते हैं
0: हाँ ओके।
1: ऐसा।
0: तो ये नॉर्मल चेकअप्स यानी वेजाइनल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, सबके
1: जी
0: लिए यानी इतने चेकअप्स
1: जी
0: ज़रूरी
1: जी
0: हैं।
1: जी जी कंपलसरी है ये। एंड ये भी है कि डिलीवरी के बाद हम पेशेंट को अवेयरनेस नहीं थी, बट आजकल क्या है
0: जी
1: HPV इन्फेक्शन बहुत हो रहा,
0: जी जी
1: सर्वाइकल कैंसर जो हो रहा
0: ओके
1: है,
0: हाँ
1: जो
0: हाँ
1: बहुत कॉमन कैंसर है अभी औरतों में, जेनिटल कैंसर, तो
0: ओके
1: उसके लिए हम वैक्सीन भी एडवाइस दे रहे।
0: जी
1: डिलीवरी के बाद 6 वीक्स के बाद शी कैन टेक द वैक्सीन।
0: ओके 6 वीक
1: सिक्स
0: के
1: वीक्स के
0: बाद
1: बाद वो
0: जी
1: वैक्सीन ले सकती हैं।
0: ओके
1: एंड बहुत ज़्यादा मिथ्स है कि वो वैक्सीन नहीं लेना, बल्कि
0: हाँ
1: ऐसा नहीं है,
0: हाँ
1: यू कैन टेक द वैक्सीन। उसके 3 डोसेस होते हैं लेने का।
0: अच्छा
1: 0 मंथ में फर्स्ट डोस लेते हैं, फिर टू
0: ओके
1: मंथ्स के बाद सेकेंड
0: अच्छा
1: डोस लेते हैं, फिर 6 मंथ्स के बाद 3rd डोस लेते हैं।
0: ओके
1: दिस विल गिव यू प्रोटेक्शन फॉर सर्वाइकल कैंसर, जो कि मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, जेनाइटल कैंसर।
0: ओके
1: जी एंड
0: जी
1: ये भी है कि पोस्ट डिलीवरी आयरन कैल्शियम आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल 3 to 6 मंथ्स मैं तो एडवाइस देती हूँ कि शी
0: ओके
1: हैज़ टू टेक आयरन।
0: अच्छा
1: कैल्शियम भी मिनिमम 6 मंथ्स लेना है, और
0: ओके
1: व्हेनेवर टिल शी इज़ फीडिंग लेना तो बहुत बेटर है।
0: ओके तो यानी ऑलरेडी आपने बताया हमारे समय इनको कि सभी गिजाएं,
1: जी
0: कोई रोक नहीं है किसी के लिए
1: जी
0: भी,
1: जी
0: चाहे
1: जी
0: सिजेरियन हो या वजाइनल हो,
1: जी
0: सभी गिजा वो ले सकती हैं, हर
1: यस
0: तरीके की, दाल
1: यस
0: हो या सब्जी हो, सभी
1: जी
0: तरीके
1: जी
0: की
1: जी
0: जी। तो डॉक्टर आयशा सलमा साहबा, आपने बहुत सी मालूमात हमारे यानी सामाइन को, ख़ास तौर से ख़वातीन को दी, नई माओं को दी,
1: जी
0: और कुछ मशवरे आप नई माओं के लिए देना चाहेंगी?
1: जी बस यही है कि बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा पोस्टपार्टम इश्यूज हो रहे हैं,
0: जी
1: आपको कभी भी दिखा कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, प्लीज़ टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, या फिर अपने डॉक्टर से मिलिए। एंड आपके गिज़ा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। एंड आयरन कैल्शियम मस्ट एंड शुड लेना है आपको। आप अपना एंड अपने बच्चे का ख्याल रखिए। एज डॉक्टर्स वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल।
0: जी तो आयशा सलमा साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे सामईन से बहुत देर आपने गुफ्तगू की, उन्हें बहुत सारे मालूमात आपने दिए, हमारे स्टूडियो आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू ऑल एंड टॉक ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।

दोस्तों, आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक अजीम नेमत है, एक तवील जद्दोजहद और लाखों कुर्बानियों की दास्तान है। ये वो आज़ादी है जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, अपनी जानों का नजराना पेश किया और आने वाली नस्लों के लिए एक आज़ाद वतन का ख्वाब देखा। आज हम इसी आज़ाद वतन की खुशियों का जश्न मनाने जा रहे हैं। हमारा परचम सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी कौमी खुददारी, इत्तेहाद और आज़ादी की अलामत है। और जब वतन की बात हो तो दिल खुद ब खुद नगमों की जबान बोलने लगता है। फिल्मी गीतों ने भी वक्तन फ़ौक्तन हुब्बुल वतनी की जज्बात को आवाज़ दी है। कभी ये गीत हमें सरहदों पर डटे हुए सिपाहियों की याद दिलाता है, कभी वतन की मिट्टी से मोहब्बत का एहसास दिलाता है और कभी हमें पैगाम देता है कि वतन से मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि अपने फराइज को ईमानदारी से अदा करने का नाम है। तो आइए आज की इस खूबसूरत महफिल में हुब्बुल वतनी के जज्बात को मज़ीद ताज़ा करते हुए सुनते हैं एक ऐसा दिलनशीन फिल्मी नगमा जो हमारे दिलों में वतन की मोहब्बत को और भी गहरा कर देगा। पेश खिदमत है वतन की मोहब्बत से सरशार एक खूबसूरत फिल्मी गीत। आइए दिल से सुने, दिल से महसूस करें और अपने प्यारे वतन के नाम इस नगमे को पेश करें।

दोस्तों, कल हमारे सामने भारत देश का तिरंगा अपनी 80वीं सालगिरह के साथ लहराएगा। हमें उन तमाम मुजाहिदीन को इस मौके पर और शहीदों को खराजे अकीदत पेश करना चाहिए जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अजीम कुर्बानियां दी। देशभक्ति सिर्फ नारों का नाम नहीं, देशभक्ति अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने फराइज की अदायगी, इत्तेहाद व भाईचारा और

दोस्तों, गीत सुरीले गाता चल, अभी आपने सुना। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं पयाम-ए-शब ज़ैदी की ज़बानी।

0: दोस्तों, आप सबको यौमे आज़ादी हिंद बहुत बहुत मुबारक। कल हम सब हमारे देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज़ादी का हकीकी मफहूम ये है कि हम नफरत के बजाय मोहब्बत, तासुब के बजाय रवादारी, नाइंसाफी के बजाय इंसाफ और बेहिसी के बजाय खिदमत को इख्तियार करें। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ आज़ादी की तारीख ना बताएं, बल्कि इन्हें जिम्मेदारी, दयानतदारी, नज़्म ज़ब्त, भाईचारा और वतन से मोहब्बत का सबक भी दें। याद रखिए, मुल्क सिर्फ सरहदों से नहीं बनता, मुल्क अपने शहरियों के किरदार से बनता है। आइए जश्न आज़ादी के इस मौके पर आहद करें कि हम अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा करेंगे। पयाम शब अभी आपने सुना, इसी पर दोस्तों उर्दू प्रोग्राम नए रंग अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। चंद ही लम्हों में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का

0: संविधान जनभागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाडा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया, जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। यह सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों के यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। छात्रों ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day this evening, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
3: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
2: President Draupadi Murmu highlighted that making the country a Naxal-free is a major achievement as for decades Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said today the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
3: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अनुभव.
0: थैंक यू अमित. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन मार्जिनली. सेंसेक्स ड्रॉप्स 71 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 24,366. India's wholesale inflation eases to 9.78% in July this year and global crude oil prices rise.
1: आर्थिक सुर्खियों में

घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट, सेंसेक्स में 71 अंक का नुकसान, निफ्टी 24,366 के स्तर पर बंद। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जुलाई के दौरान मामूली गिरावट से 9.78% दर्ज और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त।

0: And as always, before we start the program, here is an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मामूली गिरावट से 71 अंक गिरकर 78,009 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 30 अंक के नुकसान से 24,366 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसई मिड कैप सूचकांक में 0.5% और एनएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% की गिरावट दर्ज हुई. वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर कारोबार की शुरुआत दबाव से हुई और पहले सत्र में दोनों सूचकांक मंदी के दबाव में बने रहे. हालांकि बाद में गिरावट में थोड़ी कमी आई और कारोबार के अंत में सूचकांक गिरावट के साथ ही बंद हुए.
0: Benchmark domestic equity indices ended marginally lower on the last trading day of the week. The Sensex dropped 71 points to close at 78,009. The Nifty dipped 30 points to settle at 24,366. The broader market also remained under pressure. The Nifty Mid-Cap 100 index declined 0.5%, while the Nifty Small-Cap 100 index slipped 0.7%. The markets opened on a weak note amid uncertain geopolitical conditions. Both benchmark indices remained under pressure during the first half of the session. However, in the latter half, the indices pared some of their intraday losses before closing in negative territory.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों में गिरावट रही. गिरावट वाले शेयरों में एशियन पेंट्स 1.7%, इंडिगो 1.4% और एनटीपीसी 1.2% के नुकसान से बंद हुए. हालांकि भारतीय एयरटेल 2.5%, अडानी पोर्ट 1.8% और आईसीआईसीआई बैंक 0.6% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे.
0: In the sectoral indices on the BSE, 23 out of 28 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, housing finance declined 1.4%, mid-small private banks quality tilt dropped 0.6%, and energy as well as oil and gas fell nearly 0.5%. In contrast, hospitals increased 1.5%, telecommunication gained 0.9%, and insurance added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,393 companies declined. Shares of 1,896 companies advanced, while shares of 213 companies remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली बढ़त से 95.43 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. विशाल, क्या नजर आता है बाजार में ट्रिगर क्यों नहीं आ पा रहा, या बाजार में कौन सा दबाव है जो बाजार को अभी भी तेजी बढ़ाने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है? बाजार दबाव में खुलते हैं, कुछ उसमें सुधार आता है, लेकिन अंत में दबाव ही हावी रह जाता है.
2: देखिए, आपने सही कहा. अगर आज के बाजार पर नजर डालें तो जो शुरुआत हुई वो बड़े दबाव में हुई, लेकिन दोपहर बाद वो जो दबाव जब अपनी पीक पर पहुंचा तो उसके बाद एक बार फिर से खरीद शुरू हुई शेयरों की और थोड़ी सी रिकवरी जरूर हुई. इस तरह का पैटर्न केवल आज की बात नहीं है. मोटे तौर पर अगर निफ्टी को देखें तो लगभग पिछले 8 या 9 सेशन में ही पैटर्न रहा है. इस पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट लगभग 0.8 और 0.6% के आसपास की गिरावट रही है. कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन एक एंथुजियाज्म की कमी है जैसे आप कहें मार्केट में, और वो कमी एंथुजियाज्म की कई फैक्टर्स के कारण है. कुछ फैक्टर्स इंट्रा मार्केट कहे जा सकते हैं, यानी कि जो एक एक करके जो नतीजे आ रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, यानी कि जिनको सेक्टोरल लीडर्स कहा जाता है, वो उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतर रहे हैं. मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ खासतौर पर उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतर रहे हैं जितने होने चाहिए थे. पहली बात तो ये. और दूसरा,

0: बाजार हमेशा थोड़ा सा इंटरनेशनल फैक्टर्स की तरफ भी उसकी नजर जाती है।
1: जी।
0: तो जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, खासतौर पे मिडिल ईस्ट की बात करें, यानी कि ईरान बनाम अमेरिका जो तनाव जारी है, उसमें उम्मीद जरूर जगी थी आपसे 10-15 दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, कि इसका समाधान निकल रहा है, इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन पिछले लगभग 8 से 10 दिन में उस तस्वीर में जो बदलाव हुआ है, उसका असर बाजारों पे ज्यादा देखने को मिल रहा है, बनिस्बत जो जैसे हम तेल की कीमतों की बात करें, क्योंकि वो सेंटिमेंट नहीं उभर के सामने आ रहा है। यानी कि निवेशकों को ये लग रहा है कि शायद अभी इसमें समाधान थोड़ा और समय लगेगा, तो थोड़ा सा और कॉशियस रहने की जरूरत है। इसीलिए जो एफआईआई की बिकवाली है वो भी जारी है। हालांकि आंकड़ा आज का देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग अगर मैं गलत नहीं तो शायद 500 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है जो बिकवाली एफआईआईज ने की है। लेकिन मोटे तौर पर जो बड़ी पिक्चर उभर के आती है, उसमें फिर हम बाजार की तरफ देखते हैं कि आज घटा या बढ़ा
1: जी।
0: तो वो घटा ही है। अगर वो 0.8% भी घटा है तो वो घटा ही माना जाएगा, अगर वो 0.1% घटा है तो भी घटा ही माना जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि एक सस्टेन्ड एफर्ट मार्केट में जरूर है कि इसको ये जो ट्रेंड है इसको किस तरीके से कंट्रोल में रखा जाए, काबू में रखा जाए। और एक कोई इंडिकेटर का इंतजार है, किसी एक इंडिकेटर का इंतजार है, और मुझे लगता है कि वो स्पर जो है बाजार में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में।
1: सो विशाल, यू आर सेइंग दैट टिल द टाइम द मार्केट सीज सम काइंड ऑफ अ स्पर, अ काइंड ऑफ ट्रिगर, basically what is going to happen is that the geopolitical conditions, the geopolitical scenario, the way it is what is going to weigh on the minds of investors till there is a clearer picture. And not just a clearer picture which stays clear for over a long period of time, over a sustained period of time, for markets to take their cues and, you know, get back.
0: It's like, you know, there's a trust factor as well when it comes to bigger international push and pull or triggers as well. Now in this scenario, the ongoing tensions in the Middle East, I think trust factor plays a very important role. Nothing seems to be fixed and finalized, because for the past 2-3 months, what is happening is a decision is taken, then that decision is renegated upon from either side or from the both sides as well, or there is some other factor which comes into play. So it's going, you know, it's sort of a pendulum effect. It's going to and fro, too much happening. By the time the markets try to recover from a particular event which has happened, something else comes across.
1: Yes.
0: So that is why we've seen this subdued sentiment in the markets over the past 5 to 7 sessions. And that is not only the factor, but yes, that is a major factor as well.
2: Vishal, agar sectoral indices ki baat kare, अभी भी पीछे कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि मेटल सेक्टर काफी बेहतर कर रहा था, अब वो भी दबाव में आता हुआ नजर आ रहा है। ये कौन से दबाव हैं जो इस तरीके की चीजों को अभी रोक रहे हैं, या सिर्फ जो आपने शुरुआत में बात करी कि सिर्फ इंटरनेशनल फैक्टर हैं जो बाजार को दिशा देने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहे हैं?
0: देखिए, कई सेक्टोरल इंडाइसेस की जब हम बात करते हैं हमें, तो उसमें हमें ये भी देखना है कि उस सेक्टर पे ज्यादा प्रभाव किस चीज का है। आपने मेटल सेक्टर की बात की, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां किस तरह से चल रही हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका इस सेक्टर से संबंधित पॉलिसीज में क्या बदलाव आया है, उसका असर, या फिर फ्यूचर में किस तरह की इंडिकेशन आ रही है, उसका असर सीधे पड़ता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा कि ये जैसे कहा जाए मुसीबत के समय के हीरो कहा जा सकता है। जैसे कि अगर आज ही का बाजार हम देख लें तो निफ्टी की तरफ देखें तो मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, और मेरे ख्याल से बीएससी की तरफ देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे जो इंटरनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो या इंटरनल मूवमेंट्स हैं, उनका काफी असर रहता है, उनका प्रदर्शन ठीक रहता है, उनके जो सेक्टोरल लीडर्स हैं, अगर उनके क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो अच्छे आ रहे हैं, और कोई ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है जिसका नेगेटिव असर पड़े, तो वो धीरे से जो नुकसान बाजार में होता दिखाई हो रहा है उसे कवर अप भी कर लेते हैं। तो सेक्टोरल इंडाइसेस को समझना है तो फिर ये भी समझना पड़ेगा कि उनके ऊपर जिन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है वो क्या डोमेस्टिक है फैक्टर्स, या वो इंटरनेशनल ज्यादा है, या वो दोनों का कोई एक मिक्स है। और अगर वो मिक्स है तो आपको वैसा ही मिश्रित रिएक्शन जो है उस सेक्टर की तरफ से भी देखने को मिलेगा।
2: क्या ये माना जाए कि निवेशक अभी उतने सतर्क हैं कि उनको लगता है कि अगर पिछले दिनों से और आज

0: दिनों में कहीं उस पर्टिकुलर सेक्टर में उनको मुनाफे की गुंजाइश नजर आती है तो वो लंबे समय को छोड़ के अल्प अवधि में अपना कहीं ना कहीं जो बैलेंस शीट है उसको मजबूत कर रहे हैं या उसको ठीक ठाक करने पे।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त जिन्हें कहा जाए कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के जो इन्वेस्टर हैं वो शायद इस वक्त बहुत तेज गति से अपने मैं कहूँगा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक एक एक एक लंबी दूरी का खिलाड़ी होता है, और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने कहीं अपने अपना धन निवेश किया है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। हालांकि मैं जरूर कहूंगा कि बीच बीच में उसको उस इन्वेस्टर को उस सेक्टर की पॉलिसीज, उस सेक्टर के जो लीडर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया है उसकी परफॉर्मेंस, उस सब पे नजर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन ये जो समय होता है जब उठा पटक चल रही है बाजार में, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो उसमें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फायदा भी है और कहीं कहीं नुकसान भी है।
0: बहुत संक्षेप में एक चीज ये जानना चाहूंगा, क्योंकि भारत की जो घरेलू परिस्थितियां हैं और सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो एमएसएमई को सपोर्ट देने से इनिशिएटिव ईसीजीएलएस थोड़े दिन पहले ही सरकार ने दिया है, और इंफ्रा पे भारी मात्रा में निवेश है जो बरकरार है, ये सारी स्थितियां हमारे बाजार को कितना स्थायित्व देने की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाती हैं।
1: इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो आज ही की बाजार की परफॉर्मेंस है। मैंने कहा कि निफ्टी की अगर अपनी तरफ देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर था उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, उसने थोड़ा सा शॉक को एब्जॉर्ब किया। और देखिए जहां तक पॉलिसीज की बात है उनमें कंसिस्टेंसी की कोई कमी नहीं है, लेकिन केवल पॉलिसीज बाजार की दिशा तय नहीं करती हैं। बहुत सारी और भी सेंटिमेंट्स हैं जिनसे बाजार की दशा और दिशा तय होती है, जिनमें डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से वो मोमेंटम बन रहा है बाजार में।
0: चलिए खबरों के कुछ और अच्छी खबरों को भी नजर डालते हैं। जुलाई के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के दौरान वार्षिक महंगाई दर के मुख्य कारक खनिज तेल, खाद्य पदार्थ, धातुएं, गैर खाद्य उत्पाद और रासायनिक उत्पाद रहे। मासिक आधार पर मुद्रास्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा की महंगाई दरों में कमी आना है। थोक महंगाई दरों में मामूली कमी के बावजूद लगातार तीसरे माह महंगाई दर 9% से ऊपर बनी हुई है। उत्पादक मूल्य सूचकांक में वार्षिक आधार पर 9.57% की बढ़ोतरी हुई, जबकि मासिक आधार पर यह लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा। थोक मूल्य पर आधारित खाद्य सूचकांक जून के 6.14% से बढ़कर जुलाई में 6.65% हो गया। थोक मूल्य सूचकांक में शामिल प्रमुख घटकों में प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर 7% से बढ़कर 8.5% रही, निर्मित वस्तुओं की महंगाई दर 7.5% से बढ़कर 8.3% रही। हालांकि ईंधन और ऊर्जा समूह की महंगाई दर जून के 27.4% से घटकर 20% रह गई।
2: विशाल, इफ यू लुक एट द फिगर्स, WI फिगर्स, नो डाउट the overall figures, if you look at it, have come down 9.78% in July vis-a-vis, you know, 9.87% in June. But if you look at individual, first of all, I mean, I would like a comment on that, but if you look at the individual sectors, so to speak, we see that as Amit was just reading, that overall, if you look at it, except for the fuel, fuel and power group, other places in all the other major categories, the WPI has gone up. What would you say to that?
1: The basket of WPI is divided into separate groups. Now, we will have to understand the aspects which go in come, you know, arriving at this particular figure. Overall, this is a welcome news that it has come down from 9.87 to 9.78%. But there's still a lot of work which needs to be done. Although, the reason why it has come down is that the fuel and power group, which has seen a sharp decline from around 27% 20%, that has contributed to this marginal decline which we see. The reason being that group alone constitutes around 30% of the overall basket. Now, this is really important for us to understand, because when we look at the WPI basket, fuel and power is one of the major, group or one of the major sectors or factors which the money is spent upon.
2: Yes.
1: Be it industries, be it, you know, domestic consumption and overall as well. So we're talking about the WPI as in a wholesale price index. That is why we see that this has come down. Now, if you look at other figures, other aspects, of course, it has gone up by some margin, 1% here, 1.5% there. But largely,

0: अगर इसमें मामूली गिरावट आती, चाहे वो ईंधन के या ऊर्जा के दामों में ही सही, क्या हम ये माने कि ये आपने अभी कहा अच्छा संकेत है, निश्चित तौर पर अच्छा संकेत है, लेकिन चूंकि इसका वेटेज और जो हमारे अभी जो खाद्य वाला बास्केट है या हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का बास्केट है उसके प्रदर्शन पे तो निश्चित तौर पे अभी भी महंगाई दर कहीं ना कहीं हावी है और फिर ओवरऑल 9% से ऊपर बनी है, इसमें कितना चिंता जताने की जरूरत है या कितना सतर्क रहने की जरूरत है?
1: देखिए, मैं कहूं कि आम उपभोक्ता या आम आदमी के लिए एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े आम आदमी से पहले सरकार को कितनी राहत पहुंचाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सरकार के खाते में ऊर्जा और तेल पे खर्च किए जाने वाले धन में से कुछ धन बचेगा तो वो धन बाकी जगह खर्च होगा और जब वो बाकी जगह खर्च होगा तो उसका सीधा फायदा आम आदमी को पहुंचेगा। अगर सरकार की जेब में ही पैसा नहीं बचेगा तो वो कहीं और खर्च नहीं कर पाएगी और अगर वो कहीं और नहीं खर्च कर पाएगी तो उसका फायदा फिर आम आदमी को कैसे होगा? तो इसे थोड़ा सा लंबा रास्ता जरूर है लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर सब्र किया जाए तो आम आदमी तक फायदा जरूर पहुंचेगा।
2: लेट्स मूव ऑन। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रोज बाय 14.1 बिलियन US डॉलर्स टू 707 बिलियन US डॉलर्स ड्यूरिंग द वीक एंडेड August 7th। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, फॉरेन करेंसी एसेट्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द रिजर्व्स इंक्रीज्ड बाय 9.9 बिलियन US डॉलर्स टू 574.6 बिलियन US डॉलर्स ड्यूरिंग द वीक। Gold reserves added 3.9 billion US dollars to 108.7 billion US dollars. Country's reserve position with the International Monetary Fund was up by 116 million US dollars to around 4.9 billion US dollars. Special drawing rights increased by 79 million USD to 18.74 billion US dollars. Vishal, again, good news in the sense that foreign exchange reserves rose by, as I said, $14.1 billion in the last week. So somewhere you would say that it's also the international crude oil prices, the effect we can see on the foreign exchange reserves that are here?
1: That and combined with the recent move by the government and the RBI for FCNA, yeah, the OCIs and POIs wherein they can invest their money in a particular scheme. Now that has contributed a lot, and I can see although those figures are not here, but I can see I'm pretty sure that would be a significant part of the contribution. But yes, of course, again, what is saved on one end, if you don't spend it there, then of course it can be considered as a saving, and that is why the exchange reserves, foreign exchange reserves, are a good indicator of how exactly are we how wisely are we spending our money and what is the international scenario. So as of now it looks to be in our favor, to be very honest.
0: बहुत संक्षेप में एक लाइन में, अगर साप्ताहिक आधार पर सरकार की जेब में विदेशी मुद्रा बचती है, इसके संकेत कितने अच्छे नजर आते हैं?
1: देखिए, मैं वही कहूंगा जो मैंने पहले कहा था अमित जी के, अगर
0: जेब में पैसे आ रहे हैं,
1: आधार पर जेब में पैसे बच रहे हैं तो वो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले ही सप्ताह उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भरता है तो अब देखना पड़ेगा कि सरकार इन पैसों का इस्तेमाल या ये जो धन संचय हुआ है ये किस स्कीम पे होता है, किस सेक्टर पे होता है, किस तरह सरकार उसको खर्च करती है।
0: मोटे तौर पर राहत की बात तो है।
1: मैं बिल्कुल
0: जी। चलिए नजर डालते हैं एशियाई बाजार पर। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.4% और जापान के निकेई में लगभग 0.6% की बढ़त दर्ज हुई। विशाल, अगर इसके साथ एशिया के प्रमुख बाजारों के भी हम चर्चा करें, वहां पर ठीक है, नुकसान तो नहीं है और जैसा कि पहले कहा जाता था अब पूरा विश्व एक वैश्विक बाजार बन चुका है, क्या ये माना जाए? क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारे जो संकेत हैं वो उतने उत्साहजनक नहीं है, जिस जो बाजार में टिगर की आप बात कर रहे थे वो भारतीय बाजारों में आ पा रहे, क्या यही एक कारण है या सभी बाजार निवेशक अभी देखो और सतर्क रहो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा जिस तरह से आपने भी बताया सब उसी के प्रति चिंतित हैं, या इसके अलावा और भी कोई कारक है?
1: देखिए, केवल मिडिल ईस्ट की बात नहीं है, अगर हम दूसरे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो यूरोपीय देशों की बात करें, उनके बाजारों की बात करें तो उनपे रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर पड़ता है।
0: एक खबर इसमें बीच में यह भी आई थी क्योंकि यूक्रेन से, चूंकि वो बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक था, वहां उसके दामों में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, कमी भी आई है।
1: जी बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस अर्थव्यवस्था के आसपास का इलाका जो है वहां अगर किसी तरह का जियोपॉलिटिकल तनाव है तो उसका सीधा असर वहां भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ तनाव ऐसे होते हैं जिनकी

0: ग्लोबल इम्प्लीकेशन है। रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव है उसकी भी ग्लोबल इम्प्लीकेशन थी, क्योंकि उसको उसके चलते रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ते हैं, और अगर इन दोनों के बीच तनाव बढ़ते हैं तो उसका असर बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर देखने को मिलता है। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर फ्यूल प्राइसेस पे और उसका सीधा असर एनर्जी सेक्टर पे पड़ता है, जिसका असर इन टर्न पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर पड़ा, और हमने देखा भी कितना किस तरह से पड़ा। फिर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, कुछ सेक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर हो, और उसका असर भी देखने को मिलता है। और फिर कुछ इंटरनल पॉलिसीज जो हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में लगभग 2 से 3 साल में हम सब लोगों ने देखा है कि कई सारी अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको और इंटरनली बाउंड कर दिया है, तो उसका कितना असर बाहर पड़ेगा, किस तरह से वो प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो ये सब फैक्टर्स मिला के एक एक पिक्चर क्रिएट करते हैं जिसमें मार्केट ढूंढती है कि कोई स्पर तो मिले, कोई कोई कोई एक स्पार्क तो मिले। अब वो उसी का इंतजार शायद हो रहा है।
1: लेट्स मूव ऑन टू कमोडिटीज। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रेटन्ड एन इनडेफिनिट नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरान। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 0.1% अप at $87 and 11 cents per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.3% up at $81 and 50 cents per barrel when reports last came in.
2: घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.5% के नुकसान से 1,52,363 रुपए प्रति 10 ग्राम पे रहा, जबकि चांदी 0.2% की कमजोरी से 2,33,842 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। विशाल, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कच्चे तेल में, कच्चे तेल में एक खबर आती है थोड़ी सी उसकी कीमतें वापस से दबाव में आती है, बढ़त की तौर पे करती हैं, लेकिन पिछले अगर एक सप्ताह की बात मैं सिर्फ सोने चांदी के ऊपर केंद्रित करूं, सोना वहां से काफी लंबा सफर तय कर चुका है। जहां पहले लग रहा था कि नहीं सोने में अभी और गिरावट रखती, वहां से सोना वापस से रिबाउंड हुआ। अब ऐसी स्थिति में ये तेजी का क्या कारक है और कच्चे तेल की कीमतों में वो किस करवट लेती हुई नजर आएगी फिलहाल की परिस्थितियों में?
0: देखिए, मैं संक्षेप में कहूंगा, कच्चे तेल की कीमतों में तो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन सोने में आपने सही कहा, यह अनुमान मेरा भी है कि अब जो गति सोने ने, धीमी गति जो सोने ने पकड़ी है, मुझे लगता है वो धीमी गति से बढ़ोतरी जारी रहेगी। उस गति, वो गति बहुत तेज ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बढ़ोतरी जो है ये धीरे धीरे धीरे धीरे जरूर जारी रहेगी।
2: विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। और चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
1: थैंक यू अमित। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन मार्जिनली, सेंसेक्स ड्रॉप्स 71 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,366। इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 9.78% इन जुलाई दिस ईयर, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र फॉर नाउ, गुड बाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मनमीत लेकर साथ हूं मैं रोहिणी। दोस्तों कहते हैं कि कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करते हैं वही आप डिजर्व भी करते हैं। जीवन का यही फलसफा हमें लोगों की पहचान में कराता है और आप अपने कर्माज लिखते जाते हैं। आइए गीत मेरे मनमीत में प्यार के प्यारे एहसास को सदाबहार गीतों के साथ महसूस करें। इस आगाज करते हैं आज के गीत मेरे मनमीत का इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि है हम फिल्म से। जी हाँ, आपको बता दूं इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडकर, उदित नारायण और अलका याग्निक ने। वहीं साथ ही इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी जी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

100.9 MHz पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत मेरे मन बीत। तो, और श्रोताओं कहते हैं कि समय सबको बदल देता है, किसी को पहले तो किसी को बाद में। तो समय पर भरोसा रखिए और उसके साथ ताल से ताल मिलाकर चलिए। जी हाँ, ये कदम जब समय के साथ मिलकर चलते हैं ना, तो वाकई में कामयाबी का आंचल आप जरूर थामते हैं। अगला गीत संगम फिल्म से आप तक पहुंच रहा है, मुकेश जी और महेंद्र कपूर साहब की आवाज में। इस गीत को लिखा है शंकर जयकिशन जी ने और संगीत बद किया है शैलेंद्र जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज़।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। कहते हैं सफर लंबा हो या छोटा, साथ चलने वाला इंसान सही होना चाहिए। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया आप कभी कभी करते हैं जिंदगी का, क्योंकि संभलने का हुनर तभी आता है। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है, आपको बता दें आन मिलो सजना फिल्म से ये गीत है, लता जी और किशोर जी की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी जी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।
1: अच्छा।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं श्रोताओं गीत मेरे मन में, और ये अंदाज फिलहाल यहीं रोकती हूँ, यानी कि गीत मेरे मन में को आज यहीं समेटती हूँ और आपसे लेती हूँ इजाज़त। ये एहसास जो आप कल बेहद खूबसूरत अंदाज में महसूस करेंगे, जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है, अपने खून से जिस जमीन को सींचा उन बहादुरों को सलाम है। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और फिलहाल आपको छोड़े जाती हूं शहीद फिल्म से इस गीत के साथ रफी साहब की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए

0: पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए लाइटर म्यूनिशन प्रणाली खरीदने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और निबे प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1,500 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर कल हस्ताक्षर किए। ये समझौते कल नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हुए। यह प्रणाली आर्टिलरी रेजिमेंट की क्षमता बढ़ाएगी और सेना की ऑपरेशनल क्षमता मजबूत करेगी। अमेरिका के कई राज्यों में 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी नेताओं ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान की भी सराहना की। सिएटल में इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फेडरल रिजर्व बिल्डिंग पर भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा। समारोह में अमेरिकी नेताओं के साथ भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आश्रम स्कूल के हॉस्टल में सांप के काटने से 3 आदिवासी छात्राओं की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्टल में खाट की व्यवस्था नहीं होने के कारण 6 छात्राएं फर्श पर सो रही थीं, तभी उन्हें सांप ने काट लिया। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the Prime President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
1: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement, as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said yesterday the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
2: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bostar Olympics and many artists showcased their talent in Bostar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
1: The president said that the students are the architect of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
2: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

रेडियो की इस आत्मीय तरंग पर आज हम उस स्वाधीन चेतना को नमन करें जिसने भारत की मिट्टी को अपने त्याग और साहस से गौरव दिया। आजादी केवल पराधीनता से मुक्ति का नाम नहीं, बल्कि अपने विवेक से

सही चुनने और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का अवसर भी है। हमारे पूर्वजों ने जिस भविष्य का स्वप्न देखा था, उसकी सुंदरता हमारे आज के आचरण से तय होती है। आइए देश प्रेम को केवल नारों तक सीमित ना रखकर अपने व्यवहार, अपनी ईमानदारी और अपने कर्मों में उतारें। भाषा, प्रांत, परंपरा और विचारों की विविधता के बीच भारत की आत्मा हमें साथ चलना सिखाती है। हम ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ आगे बढ़ सके और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे सके। तिरंगे को नमन करते हुए यही संकल्प हो कि हमारे कर्म भारत की स्वतंत्रता की गरिमा को और ऊंचा करें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

कुछ मिलन दिनों की गिनती नहीं करते, कुछ मिलन दिनों की गिनती नहीं करते। वे भीतर एक ऐसी ऋतु छोड़ जाते हैं जो मौसम बदलने पर भी अपने रंग नहीं बदलती। आज उसी ऋतु को अपने साथ लिए मैं लौट आई हूं। पीछे एक नगर था, सामने दूसरा, बीच में फैली हुई लंबी सड़क, जैसे पृथ्वी ने हमारे लिए दो अलग दिशाएं चुन ली हों। पर जाने क्यों मुझे लगा दिशाएं अलग हो सकती हैं, नियति नहीं। उस अंतिम क्षण में जब आंखें अपना संचित जल छिपा नहीं सकी, हमने कोई वादा नहीं गढ़ा, बस एक दूसरे को इतना भर महसूस किया कि अगली भेंट तक यह संबंध अपनी धूप बचाए रखेगा। अगली भेंट तक यह संबंध अपनी धूप बचाए रखेगा। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है शक्ति।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत आवाज है मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम है कश्मीर की गली।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और आज थोड़ी सी बातें मन की करते हैं। पता है, मन के मौसम का सबसे सुंदर जो पहलू है वो ये है कि मन का मौसम हमें बदलने का मौका देता है। वो बताता है कि हमारी जो संवेदनाएं हैं वो हमारी कमजोरी नहीं है। किसी के लिए महसूस करना हमारे होने का सबसे सुंदर प्रमाण है। अपनी भूल को देख पाना भी अपने भीतर की मैच्योरिटी या कहें कि परिपक्वता है। दूसरों के दर्द को समझ लेना संबंधों की गहराई बताता है और बीती हुई बातों को पूरी गरिमा के साथ पीछे छोड़ देना संबंधों की गहराई के साथ साथ हमें ये बताता है कि हमने जीने का सलीका सीख लिया है। हर स्मृति को साथ लेकर चलना मन बताता है कि जरूरी नहीं है और हर रिश्ते को कोई अंतिम नाम देना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी मन को जानने के लिए मन के भीतर लौटना जरूरी होता है।

और वहीं से जब हम अपने मन के भीतर लौटते हैं तो हम मन के मौसम में अगली तैयारी यानी अगले मौसम की तैयारी करने लग जाते हैं। समझना थोड़ा सा कठिन है, पर ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान सी बात है कि मन का मौसम हमें बदलने का बार बार मौका देता है, इसलिए ये मौसम सबसे खूबसूरत मौसम होता है। सुन रहे हैं आप निशिगंधा, और अगला गीत फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से, आवाज है आशा भोसले की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का

आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिलने के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। मंत्रालय ने कहा कि ज्यादातर पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है, जबकि कुछ मामलों में केवल प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं बाकी हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी का अतिरिक्त पानी बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। इससे बुंदेलखंड में सिंचाई, पेयजल और बिजली की सुविधा बढ़ेगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस विचार विमर्श का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कौशल विकास सहयोग और कार्यबल की आवाजाही बढ़ाना है। परामर्श के दौरान मुख्य रूप से भारत जापान मानव संसाधन आदान प्रदान और सहयोग कार्य योजना को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। जापान में रोजगार अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को तैयार करने और दोनों देशों की संस्थाओं के बीच निकटतम समन्वय पर भी विचार हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म नया दौर से आप सभी के लिए।

प्रकृति का एक बहुत सुंदर एक नियम है, एक उदाहरण है कि धरती जब कठोर होने लग जाती है तो बारिश की बूंदें बरसकर उस धरती में नमी पैदा कर देती है और नम धरती पौधों को जीवन देने लग जाती है। ठीक उसी तरह से मन जब भीगता है तो भीतर की जो कठोरताएं होती हैं वो कम होने लगती हैं और हम दूसरों की परिस्थितियों को अधिक सहजता से समझने लग जाते हैं। क्षमा का अर्थ पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और रिश्तों में अपेक्षा से अधिक आत्मीयता दिखाई देने लगती है। पुरानी शिकायतें अपना प्रभाव खोने लगती हैं और अपने प्रति भी दृष्टि थोड़ी कोमल हो जाती है। मन समझता है कि हर बात का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं। कुछ अनुभव समय के साथ अपना अर्थ बताते हैं। कुछ संबंध भी बिना नाम के भी महत्वपूर्ण रहते हैं और भीगा हुआ मन अक्सर भीतर से अधिक परिपक्व होकर निकलता है। कितनी सुंदर बात है, बस समझने की जरूरत है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म यकीन से हम आपके लिए लेकर आए हैं।

आपको पता है, किसी भी संबंध में, किसी भी रिश्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कौन सी होती है? कभी कभी किसी संबंध में, किसी रिश्ते में

आपको पता है, किसी भी संबंध में, किसी भी रिश्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कौन सी होती है? कभी कभी किसी संबंध में, किसी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात वही होती है जो कहीं नहीं गई होती है। वह किसी आग्रह की तरह मन में आती है और फिर सामने जो परिस्थितियां होती है ना, उन परिस्थितियों के सामने वो रुक जाती है। हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा होता है उससे हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर उसकी आंखों में अपनी बात का असर जब पहले ही पढ़ लेते हैं तो हम रुक जाते हैं, फिर शब्द भी लौट जाते हैं और बातचीत किसी सामान्य से विषय पर चली जाती है, लेकिन भीतर ही भीतर एक अलग संवाद चलता रहता है, बिना रुके, बिना कुछ कहे। वहां कोई सफाई नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, केवल अपने जीवन के अनुभव की एक सच्चाई होती है। और इसी ऊहापोह की स्थिति में कभी कभी लगता है कि सामने वाला समझ गया होगा जो हमने कहा नहीं, और कभी कभी लगता है कि जो कहा गया शायद उसने वो भी नहीं समझा। और इसी अनिश्चितता में कई संबंध अपनी असली कहानी जीते चले जाते हैं। कुछ निकटताएं इसलिए गहरी होती हैं कि उनमें हर बात कहनी नहीं पड़ती, और कुछ दूरियां इसलिए बढ़ती हैं कि आवश्यक बात समय पर कही नहीं जाती। और हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो बहुत कुछ महसूस कर सकता है, कह सकता है, वो अपनी फीलिंग को, अपनी अनुभूति को शब्द नहीं दे पाता, और फिर भीतर ही भीतर जो जीवन का सच होता है, या यूं कहूं कि जो खामोशी होती है, वो अपना रास्ता खोजती रहती है, कभी किसी पुराने प्रसंग में, कभी किसी साधारण वाक्य में, और तब समझ आता है कि अनकहे में भी कई बार जीवन का पूरा अध्याय सिमटा होता है। है ना, जरूरी और ध्यान देने वाली बात। सुन रहे हैं आप निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला।

एक ऐसा शब्द जो हम सबके आसपास घूमता रहता है। हम बातें तो बहुत करते हैं उस विषय पर जब वो हमारे जीवन में वो चीजें आती हैं, तो हम उसको समझ नहीं पाते या यूं कहें अप्लाई नहीं कर पाते। वो है अधूरा संवाद, यानी अधूरी बातचीत। क्या होता है कि कुछ कुछ बातचीत ऐसी होती है जो कभी पूरी नहीं होती। उसका एक हिस्सा शब्दों में रहता है और दूसरा व्यक्ति के खुद के भीतर। हमने जो कहा उसका अर्थ सामने वाले ने समझा नहीं या क्या समझा, इस पर तो हमारा कोई वश नहीं होता। पर कभी कभी कहते हैं ना कि कहने वाले का एक साधारण

0: सा वाक्य भी सुनने वाले के लिए बहुत गहरा अर्थ लेकर उस तक पहुंचता है। और कभी कभी हम बहुत लंबा बोलते हैं, बहुत बातों की पूरी व्याख्या कर देते हैं, पर जो हमें सुन रहा होता है उसकी भावना को हम छू भी नहीं पाते, और जिसे हम व्यक्त करना चाहते थे उसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं थे। यही कारण है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्तों में बोलना पर्याप्त नहीं होता। जी हाँ, बोलना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, सुनना, समझना और महसूस करना भी जरूरी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को देखकर त्वरित निर्णय बना लेते हैं, तुरंत एक विचार खुद के अंदर बना लेते हैं कि सामने वाला जो है वो बहुत कठोर हृदय का है, उसे बातें समझ नहीं आती और वो जो है हमारी बातों को समझ नहीं पा रहा है। जनाब, क्या होता है ना कि कभी कभी इंसान जो ऊपर से कठोर दिखता है वो भीतर से उतना ही प्यार करने वाला होता है। बस अंतर इतना होता है कि वो अपने अंदर की पीड़ा को शब्द नहीं दे पाता, सही भाषा नहीं दे पाता। और कई बार जो वो दूरी बनाकर रखता है ना, उसमें कोई उपेक्षा नहीं होती बल्कि असमर्थता होती है। इसलिए राय बनाने से पहले एक बार जरूर सोचें। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है अनपढ़, आवाज है लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है मेरे लाल, आवाज है लता मंगेशकर की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र

0: में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, कथित हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और मंत्री पी नारायण के खिलाफ अमरावती विकास योजना में कथित अनियमितताओं से संबंधित आपराधिक मामलों को रद्द करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कहने पर शुरू की गई थी और कोई भी किसान शिकायत लेकर आगे नहीं आया। पीठ ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां अदालतों में नहीं लड़ी जानी चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
1: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said, yesterday the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
2: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bastar Olympics and many artists showcased their talent in Bastar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
1: The President said the students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
2: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
1: Speaking about the country's young population, the President said 65% of the country's population is below the age of 35, which is the most valuable asset. She said many of our youth are embracing the culture of job creation as they pursue the path of self-employment. President Murmu said India is moving ahead towards building a Viksit Bharat by the centenary year of independence in 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the President has given a powerful and inspiring message on the eve of Independence Day, reflecting the aspirations of a confident, growing and vibrant India. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that the President's address offered a broad vision of a stronger and more prosperous nation by touching upon the hopes of youth.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे।

0: कुछ कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

मैंने पूछा किस वन से लाते हो, मैंने पूछा किस वन से लाते हो ये अनकहे राग, किस मिट्टी से।

जिसे छूती नहीं उंगलियां, फिर भी मन के कोने कोने में फैल जाती हैं लहरियां। वह हंसा नहीं, बस इतना कहा, राग मेरा कहां, जिसे सुनती हो वह तो तुम्हारे हृदय की अनंत पुकार है। मैंने आंखें झुका ली, बात वही अधूरी रही, जैसे किसी अधलिखे पत्र में सबसे जरूरी पंक्ति बची रही, जैसे किसी अधलिखे पत्र में सबसे जरूरी पंक्ति बची रही। मैंने पूछा, किस वन से लाते हो ये अनकहे राग, किस मिट्टी से चुनते हो इतनी गहरी प्यास। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है लव स्टोरी, आवाज है अमित कुमार और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

मैंने पूछा यदि किसी दिन मैं तुमसे नाराज हो जाऊं, अपनी सारी राहें बदलकर किसी अनजान दिशा में चली जाऊं। उसने कहा, तब भी कोई शिकायत न होगी, रागिनी अपनी गति से बहेगी। प्रेम अगर सचमुच प्रेम है तो दूरी से उसकी जड़ न ढहेगी। मैंने कहा, और यदि मैं तुम्हारे संगीत से भी अपना रिश्ता तोड़ लूं? उसने धीरे से उत्तर दिया, तब मैं बांसुरी रख दूंगा, पर तुम्हारे लिए जन्मे राग को कहां रख पाऊंगा। उस क्षण लगा प्रेम शायद पाने का नाम नहीं किसी को बांध कर रखने का कोई अधिकार नहीं। प्रेम तो वह दीप है जिसकी लौ किसी मुट्ठी की बंधक नहीं होती, फिर भी उसकी एक किरण दूर बैठे मन तक पहुंचती है

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है बेताब, आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और उसके बाद फिरोज होंगे आपके साथ। पर चलते चलते एक सुंदर सा संदेश आप सभी के लिए। आजादी हमारे लिए केवल इतिहास का गौरव नहीं बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाने का सतत दायित्व भी है। इस पावन अवसर पर उन सभी ज्ञात अज्ञात वीरों को नमन जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। उनके त्याग ने हमें केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं दिया बल्कि अपने सपनों को दिशा देने का अधिकार भी दिया। आइए हम ऐसी स्वतंत्रता को सार्थक करें जिसमें विचारों में उदारता, आचरण में ईमानदारी और हृदय में देश के प्रति सच्चा सम्मान हो। हमारी विविधता हमारी शक्ति बने और एकता हमारी पहचान। देश की प्रगति केवल बड़े परिवर्तनों से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के छोटे छोटे जिम्मेदार कर्मों से निर्मित होती है। आज तिरंगे को नमन करते हुए अपने भीतर यह संकल्प जगाएं कि भारत की गरिमा हमारे व्यवहार में दिखाई दे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा भारत सदैव समृद्ध, सशक्त और गौरवशाली रहे। जय हिंद। और अब फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति, छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, आवाज है उदित नारायण की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान करने का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए गए। इस कार्यक्रम को अपार जन समर्थन मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। सरकार ने टीवी चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला केबल टेलीविजन

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 10 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज़। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम उन चुनिंदा गीतों को लेकर आए हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं और बार बार उस पर थिरकना भी चाहते हैं। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों कहते हैं कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। ऐसे ही एक लाजवाब और दिलनशीन नगमे की बात करने जा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत और फख्र की एक नई रोशनी जगा देता है। फिल्म उपकार का ये सदाबहार गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो इसलिए क्योंकि वक्त भी है और ये वक्त की नज़ाकत भी और उसकी मांग भी। आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इसी उपलक्ष में इसी नगमे के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करेंगे। हमारे किसानों की मेहनत, हमारी मिट्टी की बरकत और देश के प्रति अटूट प्रेम का खूबसूरत पैगाम है इस नगमे में। जब भी ये गीत बजता है ऐसा लगता है मानो खेतों की हरियाली, मिट्टी की खुशबू और तिरंगे की शान एक साथ दिल को छू जाती है। इस गीत के बोल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा मुल्क सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारी सबसे बड़ी दौलत है।

मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। यकीनन मेरे देश की धरती सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसमें हम सब के खून शामिल है। और हमारे देश के वीरों ने इस धरती को बचाने के लिए, इस धरती के लिए, रक्षा के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे वीरों ने, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की मिट्टी को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, तब जाकर हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:20:50। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस महफिल में मैं हूँ आज आपका हमराही, आपका दोस्त फिरोज। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम भी बेहद पसंद आ रहा होगा। दोस्तों कहते हैं कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो सुनते ही होठों पर मुस्कान और दिल में रौनक ले आते हैं। आज अगला ये नगमा हम कुछ ऐसा ही आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसा ही शानदार और दिलकश गीत जिसे दर्शकों ने अपनी ताजगी और कशिश हमेशा उसको सुनने में बरकरार रखी। फिल्म नया दौर का ये सदाबहार नगमा उड़े जब जब जुल्फे तेरी अपनी चुलबुली धुन, दिलचस्प बोल और बेहतरीन अदायगी के लिए आज भी उतना ही मकबूल है जितना पहले था। इस गीत को अपनी खूबसूरत आवाज़ों से सजाया है सुरों के दो बेमिसाल फनकारों ने, मोहम्मद रफ़ी साहब और हम सब की प्यारी आशा जी ने। गीत की मस्ती, दोनों गायकों की शानदार जुगलबंदी और उसका खुशनुमा अंदाज हर बार सुनने वालों का दिल जीत लेता है। यही वजह है कि यह नगमा आज भी हर संगीत प्रेमी की प्लेलिस्ट में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। तो आइए यादों की इस हसीन महफिल को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म नया दौर का वही सदाबहार नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो

फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल है। स्वागत है आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में, और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं हूँ आपके साथ, आपका हमराही फेरोज। और हम और आप मिलकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सफ़र पर, गीतों के, नगमों के और बेहद खूबसूरत संगीत के सफर पर, जिसमें हम अब बढ़ेंगे एक बेहद खूबसूरत फिल्म के गीत की तरफ। और वो नगमा है नासिर हुसैन साहब के निर्माण और निर्देशन में आई फिल्म तुमसा नहीं देखा से। ये फिल्म आई थी 1957 में। दोस्तों, पुराने हिंदी सिनेमा का जिक्र हो और मस्ती, शरारत और दिलकश अंदाज वाले गीतों की बात न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो आइए, आपके लिए जो नगमा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी धुन सुनते ही चेहरे पर मुस्कान और कदमों में थिरकने का एक नया जज्बा लेकर आगे बढ़ेगा। और वो नगमा है फिल्म तुमसा नहीं देखा का। एक ऐसा गीत है जो अपनी चुलबुली अदाओं, जिंदा दिल लय और खूबसूरत शब्दों के लिए आज भी उतना ही मकबूल है। इस गीत को अपनी जादुई आवाज़ों से सजाया है सुरों के दो बेमिसाल फनकारों ने, मोहम्मद रफ़ी साहब और एक बार फिर से आशा जी ने। इसकी दिलनशी बोल लिखे हैं मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, जबकि इसकी यादगार धुन तैयार की संगीत के उस्ताद ओपी नैयर साहब ने, जिनका अंदाज आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में खास मकाम रखता है। तो आइए उसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

फिल्म तुमसे नहीं देखा गया बेहद खूबसूरत नगमा था मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और वक्त हो चुका है आगे बढ़ने का अगले एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़ें कि आप भी चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं अपने पैगाम के ज़रिए, अपने ईमेल्स के ज़रिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हमराही का यह सफ़र आपको कैसा लग रहा है, हमें ज़रूर बताइएगा। तरीका बहुत ही आसान है, आपको मेल करना है और उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com fmgold@gmail.com। तो देर न करें और आप अपना पैगाम हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और रात के इस हम सफ़र में आप हम सफर में हूं फिरोज, आप ही हमारे साथ जुड़िए इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। और अगला जो नगमा है वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म का है। बात अगर क्लासिक दौर की हो तो इस फिल्म के नगमे को बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। और ये नगमा है फिल्म श्री 420 का। आवाजें हैं लता जी, मोहम्मद रफी साहब और मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है हम सबके बेहद जाने पहचाने संगीतकार ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म श्री 420 का यह बहुत ही प्यारा नगमा। अगर

महेंद्र कपूर साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म गुमराह से। ये फिल्म आई थी 1963 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही में आज हूँ मैं आपका हमराही फिरोज़, और आप हम सब मिलकर चल रहे हैं इस बेहद खूबसूरत सफ़र पर। और अगला नगमा हमराही की इस महफिल में फिल्म किस्मत से। ये फिल्म आई थी 1968 में। मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बेहद खूबसूरत अभिनय किया था विश्वजीत, बबीता, हेलेन, हरीश उदासानी, हीरालाल, टुनटुन, मुराद, एम बी शेट्टी वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है एस एच बिहारी ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है ओ पी नैयर साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा कह लें या कव्वाली कह लें हम आपको सुनवाते हैं आशा जी और शमशाद बेगम की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस विचार विमर्श का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कौशल विकास सहयोग को कार्यबल की आवाजाही बढ़ाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 8 सेकेंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और आज की ये नई सुबह बेहद ख़ास है, और ख़ास इसलिए क्योंकि आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं या मना रहे हैं। और ये दिन हमारे लिए बेहद अहम है, बेहद ख़ास है। ये वो दिन है जब देश ग़ुलामी की उस जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हुआ था और हम अपना स्वतंत्रता दिवस उसी रोज से मनाना शुरू कर चुके हैं। ये वो वक्त था जब हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बलि देकर इस देश को आज़ाद कराया और एक बिल्कुल आज़ाद हवा में हमें सांस लेने का मौका दिया। हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे, उनके हमेशा यूं कहें कि उनका हक हम हमेशा यूं ही अदा करते रहेंगे, उनको याद करके, उनको नमन करके। हमारे लिए ये दिन बेहद ख़ास है, बहुत ही अहम है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बलि देकर इस देश को सींचा, इस देश को आज़ाद कराया जहां पर आज हम खुली हवा में सांसें ले पा रहे हैं, खुले सपने अपने आँखों में सजाए घूम रहे हैं और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कोशिश कि बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी द्वेष के, हम अपने देश, अपने वतन, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। तो आइए उसी स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर आज के इस सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। और ये नगमा है फिल्म सिकंदर आजम से, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब और साथियों की।

आप सुन रहे आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा, और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी का सफर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। कभी कामयाबी की धूप मिलती है तो कभी मुश्किलों की छांव। लेकिन जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता और आगे बढ़ते रहता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसी खूबसूरत पैगाम को बेहद सादगी और खुशनुमा अंदाज में पेश करता है अगला ये बेहद खूबसूरत नगमा। इस गीत को अपनी जोशीली और दिलकश आवाजों से सजाया है सदाबहार गायक किशोर कुमार साहब और सुरों के बेहतरीन फनकार मनहर उदास साहब ने। दोनों की आवाजों की वो ताकत और वो सकारात्मक एहसास एक गीत को सुनने वाले के दिल में नई उमंग भर देते हैं। इस गीत का संदेश बहुत ही सीधा और असरदार है। जिंदगी चाहे जितनी भी इम्तहान ले, अपने हौसलों की धुन कभी मत टूटने दीजिए। मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और हर नए दिन का इस्तकबाल पूरे जज्बे के साथ कीजिए, क्योंकि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी अंधेरे रास्ते को रोशन कर सकती है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ आगे बढ़ते हैं, और यह नगमा है फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल से।

मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान न करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा में। वक्त हो चुका है ठीक हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4:29:19। महफिल सजी है अरुणिमा की, जिसमें हम उन नगमों को लेकर आते हैं आपके लिए जो आपको एक सही रास्ता दिखाता है, मोटिवेट करता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करता है आपको ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम सब किसी न किसी मंजिल की तलाश में भाग रहे हैं। काम, जिम्मेदारियाँ और रोज़मर्रा की दौड़ में अक्सर हम अपने लिए दो पल की फुर्सत निकालना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सुकून

ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। इसी खूबसूरत एहसास को बेहद नफासत से बयां करता है फिल्म मौसम का ये बेहद खूबसूरत नगमा। ये फिल्म आई थी 1975 में। ये गीत हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि रास्ते के हर लम्हे को महसूस करने का नाम भी है। कभी अपनों के साथ बैठना, पुरानी यादों पर मुस्कुराना, प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना, यही छोटी छोटी बातें हमारे दिल को असली सुकून पहुंचाती है। इस अमर गीत को अपनी रूहानी आवाज़ों से सजाया है लता जी और भूपेंद्र सिंह ने। गीत के भाव को बहुत ही खूबसूरत धुनों में पिरोया है संगीतकार मदन मोहन साहब की जोड़ी ने और इस गीत को लिखा है सलील चौधरी साहब ने। तो आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं इसी बेहद खूबसूरत

भावों को बहुत ही खूबसूरत धुनों में पिरोया है संगीतकार मदन मोहन साहब की जोड़ी ने, और इस गीत को लिखा है सलील चौधरी साहब ने। तो आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं इसी बेहद खूबसूरत कलाम के साथ, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में, जहाँ पर हम बातें करते हैं जिंदगी से जुड़ी हुई और जिंदगी को बड़ी ही खूबसूरत से आगे बढ़ाने की। जिंदगी हमें कई रिश्ते देती है, कुछ रिश्ते उम्र भर साथ चलते हैं तो कुछ अपनी यादों की महक छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाता है। सब्र, समझदारी और आगे बढ़ने का हौसला इन्हीं गहरे जज्बात को बेहद खूबसूरती से समेटता है फिल्म आंधी का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा। ये गीत सिर्फ बिछड़ने की कहानी नहीं कहता, बल्कि ये सिखाता है कि जिंदगी में हर अनुभव की अपनी अहमियत होती है, हर तजर्बे की अपनी एक अलग अहमियत होती है। कभी कभी जो हमें नहीं मिलता वही हमें और बेहतर इंसान बनाने की तालीम दे जाता है। शिकायतों में उलझने के बजाय यादों को सम्मान देना और आगे बढ़ना ही असल कामयाबी है। इस अमर गीत को अपनी रूहानी आवाजों से सजाया है किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने। दोनों की गायकी में ऐसा अपनापन और ऐसी नज़ाकत है कि हर लफ्ज़ सीधे

दिल में उतरता है। गीत के बेमिसाल बोल लिखे गुलजार साहब ने, जिनकी शायरी रिश्तों की बारीकियों को बड़ी ही सादगी और गहराई से बयान करती है। वहीं इसकी यादगार धुन रची है संगीत के जादूगर राहुल देव बर्मन साहब ने, जिन्होंने भावनाओं को सुरों में इस तरह पिरोया कि यह गीत समय की कसौटी पर आज भी उतना ही ताज़ा महसूस होता है जितना पहले था। फिल्म में यह गीत संजीव कुमार साहब और सुचित्रा सेन पर फिल्माया गया है। दोनों कलाकारों की संजीदा अदाकारी इस गीत के एहसास को और भी असरदार बना देती है।

0: का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागरूक ग्राहक जागरूक, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। अरुणिमा वो महफिल जहाँ पर ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की बातें हम करते हैं। और ज़िंदगी में हर शाम हमें एक बात सिखाती है, हर ढलता हुआ दिन अपने साथ कुछ यादें ले जाता है, लेकिन हर अगली सुबह नई उम्मीद के किरण भी लेकर आती है। यही सोच इंसान को मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना और आगे बढ़ना सिखाती है। ऐसे ही खूबसूरत एहसास को अपने सुरों में समेटे हुए ये 1971 की बहुत ही एक खूबसूरत फिल्म आनंद का ये नगमा है। ये गीत सिर्फ तन्हाई या इंतज़ार की दास्तान नहीं है, बल्कि ये हमें अपने भीतर झांकने, सपनों को सजोने और उम्मीद का दामन थामे रहने का पैगाम भी देता है। कभी कभी मंजिल नज़र नहीं आती, लेकिन सफ़र पर यकीन बनाए रखना ही असल हौसला होता है। इस गीत को अपनी दर्द भरी आवाज़ से और भी दिल को छू लेने वाला बना दिया है मुकेश साहब ने। उनकी गायकी की सादगी और गहराई हर सुनने वाले के दिल में एक अलग ही कशिश पैदा कर देती है। तो आइए फिल्म आनंद का वही बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

योगेश साहब की आवाज में यह नगमा था फिल्म आनंद का, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब अगला नगमा एक बेहद खूबसूरत फिल्म से, और फिल्म है प्यासा सावन, आवाज है लता जी की।

फिल्म प्यासे सावन के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को दीजिए अरुणिमा से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद मैं रहूँगा आपके साथ ठीक 5:10 पर लेकर भोर सुहानी। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों को

0: आमंत्रित किया गया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, माय भारत की उत्कृष्ट स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी और पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े स्ट्रीट वेंडर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। उन्होंने तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के संबोधन को प्रेरणादायक और प्रभावशाली बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के कई राज्यों में 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी नेताओं ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान की भी सराहना की। सिएटल में इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फेडरल रिजर्व बिल्डिंग पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। समारोह में अमेरिकी नेताओं के साथ भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे। दिल्ली मेट्रो की विस्तारित सेवा आज सुबह 4 बजे से शुरू हो गई है। ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the president highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
1: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. according to economic projections.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और भोर सुहानी में एक नई सुबह में हम सब कदम बढ़ा रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम सब अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहम है बहुत ही ख़ास है और ये सब के लिए ना सिर्फ जवानों के लिए बुज़ुर्गों के लिए बल्कि इस देश के भविष्य बच्चों के लिए भी और चाहे देश के किसी भी नागरिक के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है वो इसलिए क्योंकि हम आज एक नई सुबह में कदम इस तरीके से बढ़ा रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद भी हुआ था गुलामी के उस जंजीर को तोड़कर फेंककर देश एक नई हवा में सांस लेना शुरू किया था। दोस्तों कहते हैं कि उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी सपनों की कोई सीमा नहीं होती हर बड़ा सफ़र एक छोटे से कदम से शुरू होता है अगर इरादे मजबूत हों और दिल में अपने देश अपने कर्म और अपने भविष्य के लिए जज्बा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। इसी हौसले और देशभक्ति की भावना को बेहद खूबसूरती से पेश करता है फिल्म सन ऑफ इंडिया का ये बेहद खूबसूरत नगमा। ये गीत सिर्फ बच्चों का गीत नहीं है बल्कि

0: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

अगर शुरू दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों का मैं शानदार इस्तकबाल करता हूं भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में। वक्त हो चुका है ठीक 5:20 और 15 सेकेंड और भोर सुहानी में हम बात करते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने की, जिंदगी की तमाम मुश्किलात को दरकिनार करके अपने मंजिल तक पहुँचने की और जिंदगी में कामयाब बनने की। दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ सिर्फ सूरज की रोशनी ही नहीं बल्कि नई उम्मीदें, नए ख्वाब और एक नया आगाज भी लेकर आती है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन आपको फिर से मुस्कुराने

हमें सीखने और आगे बढ़ने का एक और मौका देता है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी कामयाबी मिलती है तो कभी इम्तिहान, कभी रास्ते आसान लगते हैं तो कभी मंजिल धुंधली दिखाई देने लगती है। लेकिन जो इंसान हर हाल में अपने कदम आगे बढ़ाता रहता है, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसी खूबसूरत सोच को बेहद सादगी और गहराई से बयां करता है फिल्म शोर का ये बेहद खूबसूरत नगमा। ये हमें याद दिलाता है कि रुक जाना जिंदगी नहीं, बल्कि हर चुनौती के बाद फिर से उठ खड़े होना ही असल जिंदगी है। ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर नई सुबह हमें यही पैगाम देती है कि अपने हौसलों को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए। अगर आज आपके सामने कोई मुश्किल है तो उससे अपने मंजिल का रास्ता समझिए, रुकावट नहीं। हौसला, सब्र और यकीन, ये तीनों अगर आपके साथ हैं तो कोई भी सपना दूर नहीं। तो आइए हम भी इसी उम्मीद के साथ आज के सफर को और आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में।

एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान न करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का मैं फिरोज शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पसंदीदा महफिल भोर सुहानी में।